ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा 9:20 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे 9:40 पर, और गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत समय रहेगा 10:00। गाने नए तराने नए फिल्म संगीत आप सुनेंगे 10:30। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा 5:00, और कार्यक्रम पणिहारी आप सुनेंगे 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय रहेगा 7:00, और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा 7:30 पर। राजस्थानी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद आप सुनेंगे 8:00, और सुगम संगीत का समय रहेगा 9:00।

0: श्रोताओं, रात्रि 9:25 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:00 को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में और राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन नहीं करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आज जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर की निगरानी में लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं कल उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी होगी। जिला प्रमुख पद का आरक्षण 13 अगस्त को पहले ही तय किया जा चुका है। लॉटरी के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जैतारण और जैसलमेर जिले के रामदेवरा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जैतारण के मरुधर केसरी धाम में दर्शन पूजन के बाद सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना करेंगे। वे यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचेंगे। बाबा रामदेव पैनोरमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद युवाओं से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 37,000 से अधिक ऑनलाइन संकल्प पत्र भरे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के माध्यम से अधिक पात्र लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा नागरिक सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित सेवा सेतु अभियान की अवधि 3 दिन बढ़ाकर 28 सितंबर तक करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत प्रदेश में 383 रक्तदान शिविरों में 15,000 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में 30 लाख परिवारों ने भाग लिया, जबकि मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में 13,40,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। आगामी रबी सीजन को देखते हुए प्रदेश में उर्वरकों और मिनी किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने बताया कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ये मिनी किट राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार की जा रही है।
2: हम मिनी किट देते हैं बहुत सारे, तो वो हमने तैयार कर दिया है। हमारा जो स्टेट की एजेंसी है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, उसको हमने ऑर्डर दे दिए हैं। मिनी किट्स हमारे तैयार हो रहे हैं और थोड़ी बारिश आई है, रिलीफ है, तो इससे हमारा अर्ली सोइंग होगी, तो हम पूरी तरह तैयार है किसान को मोटिवेट करने, प्राकृतिक खेती कराने और सारी चीजें आईटी से उसको सहयोग देने के लिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज डीएपी यूरिया का है, वो मेरे पास एडवांस स्टॉक है और हमने बहुत सारा एसएसएस के माध्यम से एडवांस में 1.25 लाख टन के करीब यूरिया और उनको सप्लाई

0: दे दिया हमने।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश भर में आज 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के नागपुर में समारोह मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और विश्व भर में आयुर्वेद संस्थान और इससे जुड़े लोग समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद को अपनाने की अपील की।
2: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए। और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितम्बर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं।
1: राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से ये समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है। समारोह में आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों, नर्स, कंपाउंडर्स और अन्य कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ चिकित्सालय और औषधालय, विशिष्ट योजनाओं तथा भामाशाह प्रेरकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पाली में आयुर्वेद दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और योग के बारे में जानकारी दी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा है कि दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव की समय पर रिपोर्टिंग से मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। वे जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय फार्माको विजिलेंस कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मरीज को दवा उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित और सही उपयोग पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से दवाओं के साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग में किसी भी तरह का संकोच नहीं करने का आह्वान किया है। राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय में होने वाली अदालत में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे। इनमें पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। मामलों का मौके पर ही तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पेंशन अदालत का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं से राहत दिलाना है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। सवाई माधोपुर पुलिस की ओर से रणथंभौर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 1 अक्टूबर से टूरिस्ट हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन पर 24 घंटे सहायता उपलब्ध रहेगी। पर्यटकों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सफारी, पर्यटन स्थलों, स्थानीय परिवहन और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। समस्या या शिकायत मिलने पर 15 मिनट के भीतर प्रारंभिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जालौर में आज टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से होने वाले कार्यक्रम में टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के शुल्क, टैरिफ प्लान, बिलिंग प्रक्रिया और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में और राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं,

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना। श्रोताओं, भक्ति संगीत की पहली प्रस्तुति अनूप जलोटा की आवाज में।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंध।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीत खयाम का, गीतकार शाहिद लुधियानवी, फिल्म कभी कभी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, संगीत सोनिक ओमिका, गीतकार वर्मा मलिक, फिल्म सावन भादुर।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, संगीत ओपी नैयर का, गीतकार SH बिहारी, फिल्म सावन की घटा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म धर्मवीर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी।

0: मुझे कुछ कहना है।
1: आवाज लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म बोबी।
2: पहले तुम।
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म हीरो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म झेकपोट।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जो हम चाहें, आवाजें केके और शाशा तिरुपति की, संगीत सचिन गुप्ता का, गीतकार कुमार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म जूली से। आवाजें दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। संगीत हिमेश रेशमिया का, गीतकार समीर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत सचिन जिगर का, गीतकार कुशर मुनीर, फिल्म मेरी प्यारी बिंदु।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी आपने सुना गणेशाय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनीता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानिनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने। संगीत भी जगजीत सिंह का है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

लाई लगी जब फूल रखने तो कब्र से

सरकना है। सरकती सरकती सरकती

شب فرقت کا جاگا ہوں فرشتو اب تو سو

pa ga ma re ni ni za ta ni za ga ma pa ga ma pa ni za.

वक्ता पेश कर रहा हूं, जनाब अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा। अमी खंती की कलम से निकली ये गजल उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी। तो आइए सुनते हैं।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

पेश है बेहद खूबसूरत गजल, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। छाया गांगुली के बेहद सुरीली आवाज में इस गजल के खूबसूरत बोल हैं अदीम हाशमी के, और इसकी धुन तैयार की है मधुरानी ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और इसे संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जरा जरा सी बातें।
1: हसीन

झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं,

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है चित्रा सिंह ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने। इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर।
2: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉक्टर जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज है। फिल्म का नाम इज्जत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। विविध भारती से यादों की महफिल। गूंज रही है मुबारक बेगम की आवाज केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी।

0: मुबारक बेगम की आवासीय फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: याद आएगी अंधेरे छा रहे।
2: एक विलक्षण गायक
3: अरे ओरे
2: संगीत के साधक
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग।
3: आपके हसीन रुख

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: खुशबू तेरे। इंदिवर की बोलती है ओपी नैयर की तरह।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने

0: रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
0: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: जीने की राह फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

अभिनेत्री तनुजा का जन्मदिन है आज और उनके गाने आज के इस कार्यक्रम में। ज्वेल थी फिल्म का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी, आशा भोसले की आवाज थी।

साथ ही मेरे साथी फिल्म का गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी की बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण निर्धारण के लिए आज विभिन्न जिलों में लॉटरी निकाली जा रही है। जयपुर में जिला परिषद के 57 वार्डों में से 10 वार्ड अनुसूचित जाति और 8 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 8 वार्डों में से 4 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। नागौर जिले में पंचायत समितियों के प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इसमें नागौर पंचायत समिति का प्रधान पद महिला के लिए, जबकि श्री बालाजी और पांचोड़ी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं मेड़ता रोड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और भैरूंदा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। जैसलमेर में रामगढ़ और मोहनगढ़ पंचायत समितियों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए, जबकि जैसलमेर पंचायत समिति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई है। नाचना और राजमथाई पंचायत समितियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। कोटपुतली बहरोड में भी जिला परिषद सदस्य प्रधान पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। आज आयुर्वेद दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का माध्यम भी है। उन्होंने देशवासियों से इस समृद्ध परंपरा को अपनाने का संकल्प मजबूत करने का आह्वान किया। प्रदेश में आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। पाली में न्यू हाउसिंग बोर्ड में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आमजन को संतुलित आहार, योग, दिनचर्या, ऋतुचर्या और निवारक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले आयुष्मान भारत को इस विचार के साथ शुरू किया गया था कि प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जैतारण के दौरे पर हैं। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैतारण के मरुधर केसरी पावन धाम में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शर्मा जैसलमेर जिले के रामदेवरा जाएंगे। वहां वे बाबा रामदेव पैनोरेमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक आयोजित पद यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे युवाओं से संवाद करेंगे। प्रदेश में आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग में पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पेंशन अदालत में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे हैं। मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इनमें पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। वहीं महिला स्कीट टीम स्पर्धा में परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही इन खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इन खिलाड़ियों के कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम भावना ने देश को गौरवान्वित किया है। पाली में पहले विश्व युद्ध के वीर योद्धा मेजर दलपत सिंह देवली का 108वां बलिदान दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी वीरता और शहादत को याद किया गया, साथ ही विचार गोष्ठी भी रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफ एम एंड 103.7 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

आप में से कितने लोग हैं जिनको ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के बीच, अंताक्षरियों में, पार्टियों में ये गाना खूब गाया है, और हां किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना।

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता, इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी, और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकूनदेह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं। कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहां हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया। अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली। एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो। इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भाई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया। और भीगा भीगा है समा, ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है, मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफर काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफर कई तरह के हो सकते हैं, जिंदगी का सफर, नौकरी का सफर वगैरह। आज के गाने जिंदगी के सफर में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं जरूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज़ के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतजार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना।

ये एक श्रोता ने लिखा, एक श्रोता लिखती हैं कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी, लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्यदेव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीजें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती, सुरीला सफर, यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहती हैं कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें यह बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद है?

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया परदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था। बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीजों के दाम थे वो देखकर आज चीजों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत क्या आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूं, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूं। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में। इतना

हजरत महमूद की आवाज आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस अनूठी आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता है जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता जो हैं वो जरूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजेक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों की रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की जरूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं जो हमारी जिंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो जरूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्नों को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करते थे और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम

12 बजे तक जारी रहें, विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरी करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के जमाने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के ज़माने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, आज सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

0: चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा उसका छूटना ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं?

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूं तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरी कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप दो दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा, विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम के जरिए और विविध भारती के जरिए जिंदगी को सुरीला बनाते रहिए। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलते हैं, रहिए विविध भारती के संग।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं, फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस गुफ्तगू को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

0: छोटा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर मेरा, छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
3: Look at what has emerged from the BRICS.
4: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
3: A durable institutional shape.
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में 2 नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
7: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
8: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं संस्थाओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
9: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
8: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
10: माय नेम इज रमेश।
11: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है।

0: मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
1: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
5: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।
7: न झटको जुल्फ से प...

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 23 सितंबर सन 2026 को फोन इन का विषय है रबी फसलों की बुआई पूर्व खेती की तैयारी। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव सिंह मीणा, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज दिनांक 23 सितंबर सन 2026 को शाम 7 बजे से लेकर 7 बजकर

30 मिनट के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 240-168 और नागौर का स्टडी कोड है 01582। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई, अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रही थी, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
0: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो हाँ, कि मैं क्या खा रही थी।
1: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपके तरफ ध्यान था।
0: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
1: आप इन दिनों कर रही है, मैं तो हमेशा से करती हूँ।
0: अच्छा, क्या लेती हो?
1: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है, जो बीमारी है, वो जड़ से निकल जाती है।
0: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की, वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
1: जी, दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं और किस तरह से आप अपनाते हैं।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे ही, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
1: जी,
0: ऐसे अपनाया है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं
1: जी।
0: ठीक है,
1: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
0: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
1: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
0: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और
2: पता है
0: जब हम न्यूज को कई बार देखते थे ना तो हमें कुछ कुछ इशारे
2: समझ में
0: आता था, तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते। जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
1: कितना मजेदार वो
0: माहौल हुआ करता था वो आज भी हमें याद है
1: जी।
0: बिल्कुल, और बताइए
1: साड़ियों का संसार, इसमें बाग प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
0: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर
1: जी,
0: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन के गई या क्या
1: कौन से कलर की है, आप
0: कैसी है और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा या आपके पति देव ने क्या कहा,
1: ये तो पता नहीं, बताएंगे नहीं बताएंगे हमारी सखिया।
0: बताना चाहिए अगर आपके पति देव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
1: वही तो, और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है?
1: और नहीं, व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
0: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं?
1: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
0: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही हूँ।
1: क्यों?
0: मैं लौकी मुझे पसंद नहीं है।
1: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
0: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
1: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
0: अरे वाह, हाँ? मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
1: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
0: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं लौकी बहुत अच्छा।
1: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है,
0: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है, पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
1: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
0: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में, क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी,
1: मम्मियां क्या करती उसके पराठे बना के खिलाती, पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके
0: बिल्कुल
1: उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
0: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
1: और अब गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो तुम्हारी आंखें अभी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है और वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था लेकिन

0: तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
0: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
0: जी
1: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
0: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
1: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति की का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
0: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं ऐसा कहा जाता है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है ना? और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
1: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
0: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
1: अच्छा,
0: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की
1: गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में। और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
0: जी,
1: है ना।
0: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है। मतलब आज ये दूरियां नजदीकी अपन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
0: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: है ना?
0: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें
0: मुक्ति छुटकारा मिल सकता है, है ना। जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम यानी गर्म गर्म गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा

0: ठंडा आइसक्रीम डाली, तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद
1: हाँ
0: में। तो
1: हाँ
0: छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ कुछ
1: हाँ
0: लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था। लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है, कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
0: और अब गीत सुन ले एक
1: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे
1: जी,
0: हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये
0: अरे
1: भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं, संवेदना से होता है।
0: क्या बात है,
1: कितनी सुंदर,
0: बहुत
1: दिल को
0: सुंदर
1: छू लेने वाली बात
0: अभिव्यक्ति दी है।
1: जी।
0: और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। बता, ये हुनर तूने सीखा
1: कहाँ
0: कहाँ से?
1: से
0: बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा, जो
1: जी
0: सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है,
1: जी
0: कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और
1: जी
0: सामने वाला समझ भी
1: समझ
0: जाता
1: भी
0: है।
1: जाता है।
0: तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: जी। सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी। और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते, वहाँ संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले, ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है
0: जी हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है, तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है, चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में अपनाते हैं।
0: और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट प्रचलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर, तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: अच्छे होंगे,
1: तो शरीर
0: अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: ये सुंदर साड़ी है, बाघ प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाघ प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
5: बिल्कुल सही कहा, और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
4: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
5: हाँ बिल्कुल, और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है, और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
4: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
5: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
4: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
5: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
4: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है, और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
5: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
4: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं।
5: और
4: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
5: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
4: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको बढ़ाता है, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं, उनके अनुभवों को।
4: जी, और बाघ प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
5: और इसीलिए बाघ प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा

0: हम तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: चले और ले लेते हैं।
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं और क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाग नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाग प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए

0: सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम की पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
2: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है, आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं, तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने का हौसला देती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
2: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी
2: बोरियत हो गई,
1: उबाऊ हो गई, जिंदगी तो यही ठहर गई। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
2: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है, तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
1: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनवाएंगे।

0: हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक नहीं, लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दू की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर ले, ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हींग, राई। बनाने की विधि, कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में ले थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील ले, छीलने के बाद चक्कर जरूर देख ले, कड़वी तो नहीं है,
1: जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गरम करें। इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5 से 7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए। दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं। इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें। हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दू कस ले, है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माएं इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी
1: और
0: लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिया में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिला कर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब गाना
0: बिल्कुल

तुम्हारे बिन न न न न न

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 23 सितंबर सन 2026 को फोन इन का विषय है रबी फसलों की बुआई पूर्व खेत की तैयारी। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव सिंह मीणा, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज दिनांक 23 सितंबर सन 2026 को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 240-168 और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई, अब चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी शाम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और खास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं, और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नजर आ जाएगा, और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबॉडी, और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी फिल्म वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे, मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीजों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है, और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ गाने, तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
2: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज
1: जी,
2: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी,
2: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम, तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम, ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोलूं, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। ये सफर जो यहाँ तक पहुंचा है आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं, जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा भी आपने कहा, वो चीज दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत अगर करनी है तो बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ आपका?
2: सर मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, बचपना कहाँ बीता आपका?
2: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का और वहाँ की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
2: सर मैंने बीकॉम किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने एमए हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्जाम दिए, सब कुछ किया, बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: नहीं, लेकिन किया। इतिहास की आपने जब बात की है तो आपके जितने सीरियल्स हैं जो धारावाहिक हैं वो ऐतिहासिक ना भी कहें तो पौराणिक तो है ही, पुरानी चीजों से जुड़े हुए, जो आपको पसंद था, आपने वो एग्जाम के लिए तैयारियों के लिए किया था जरूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचाए हो।
2: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहता है ना समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
1: बिल्कुल
2: कुछ होता है किसी चीज के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फर्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज जो मुझे अभी फील हो रही है ये चीज रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी, तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो मतलब एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग ए नॉवल, पार्वती, जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत कभी चुभ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहां खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहां निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप एक ओहो ये चुभ रहा है, जैसे
1: लेकिन आपके मुस्कान जो है ईश्वरीय है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा ये बताइए कि सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं, लेकिन जो किरदार देखे नहीं,
2: देखे
1: नहीं। माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए नहीं रहते, तो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है, क्या भाव आता है? अगर आप शिवजी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिवजी की तरह फील करना, शिवजी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
2: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक करेक्टर का कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लग ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता हाँ यार ऐसी होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द क्या दूं कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो, हर चीज बदल जाती है, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है। एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी एक्टर उस कैरेक्टर को करते हैं उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें, धूमिल ना हो छवि जो है,
1: ये जिम्मेदारी बड़ी होती है,
2: बहुत बहुत बड़ी।
1: और सामाजिक फिल्में जो हैं या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है,
2: एग्जैक्टली,
1: आपका अपना अंदाज भी काम करता
2: अंदाज काम
1: है। और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में वो छूट नहीं होती,
2: वो बिल्कुल नहीं होती सर, कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही। श्लोक जो है
1: जी जी,
2: अगर आपको संस्कृत में बोलना तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल,
2: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते, अलग अलग अंदाज में नहीं कह सकते।
2: जी जी, जैसे मेरा करेक्टर था भगवान वाल्मीकि का रामसिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से मेरे ही आश्रम से।
1: अच्छा।
2: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है
1: जी।
2: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया। वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने एक पहला जो संस्कृत श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा। बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है, चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की, लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते हैं और सुनवाते हैं।
2: जी जी।
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो कौन सा था, वो हम बात में करेंगे।
2: जी जी।
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
2: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है, वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल।
2: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे एक समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई?
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता ज़रूर है। एवरीबडी इज़ एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं और सिंगर भी हम सभी हैं और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएँ हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएँ हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता है ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन के आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप उसी राह पे चलते हैं
0: जी।
1: आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते ना कीड़ा जो उन्होंने डाला वो दिमाग में वो ही।
0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहां से आ जाता है?
1: सर, एक कहावत है ना कि
0: रुचि जगाई,
1: कि मतलब हाँ, मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
0: उस और प्रेरित
1: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा।
0: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
1: तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे।
0: अभी तो नहीं है ना,
1: अभी भी कभी कभी। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। तो काम ने करना, कुछ ना करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसअप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते, तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो है बलबी मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वॉट्स इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट। देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा ये लाइन बोल के दिखाओ। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो ससुर का कैरेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकता, ये तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का करेक्टर किया जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल वाल सफेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी। वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सच में फिल्म देख रही थी, मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ, बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ।
0: क्या बात।
1: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
0: तो सब अच्छा हुआ ना,
1: सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
0: हाँ ये बात सही है।
1: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब, एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वॉज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था 2 हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वॉज अ कैमियो करेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये क्या, ये तो अब पता लगा है। तो मेरे को जब प्रोडक्शन से कॉल आया, राजश्री प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसे समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। वो 2-3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया तो विक्रम भट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती में और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता यार ये लोग कैसे काम करते, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है, तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी। आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी, वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
0: हाँ मैं पूछूंगा जरूर आपसे लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को।
1: जी जी
0: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
1: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने, वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे चार ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे चार बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है। लेकिन वो जो सीरियल हुआ, जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अक्रूर जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं।
0: अच्छा,
1: और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर।
0: अच्छा,
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे। बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए, क्योंकि
0: पर वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको?
1: नहीं सर, वो नेगेटिव नहीं था एक्चुअली। मुझे लगता
0: था
1: तो नाम सोचेंगे अक्रूर, तो जेट क्रूर एंड अक्रूर,
0: हाँ
1: वो क्रूर नहीं है,
0: क्रूर नहीं है।
1: हाँ ये मुझे लगा कि शायद
0: अक्रूर है वो।
1: वो अक्रूर है।
0: अच्छा,
1: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है। लेकिन
0: हाँ,
1: शुरू में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
0: जी जी
1: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं, जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज ऐसे, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
0: अच्छा,
1: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते ओके नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो वो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते यार इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहां पे दंगल टाइप है, द्वंद्व युद्ध है वहां पे, तो महाराज कंस ने आपको इन्वाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल, तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो बोला कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: है ये अनसुनी है। और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार थे,
1: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, उसमें मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का करेक्टर किया
0: जी,
1: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड करेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं, और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल करेक्टर, वंडरफुल करेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहाँ पर हिंदुज़म है जहाँ पर, वहाँ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे, तो दैट वॉज अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
0: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है,
1: बिल्कुल सर,
0: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसे कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है, तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
1: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आपका जो काम है, जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं
0: हम
1: चुनते।
0: नहीं चुनते।
1: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था लेकिन कोई और कर रहा होता
0: बिल्कुल
1: है। जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल
0: जी
1: लें,
0: जी
1: गब्बर वॉज द बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया, तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
0: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना
1: बने
0: पड़ता है
1: रहना
0: और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए, इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं।
1: क्योंकि तो काम ही आपको ढूंढता रहता है।
0: ये बात तो है, और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
1: इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं,

0: एक बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो हैं लाइंस आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का, आपने इस दरम्यान बहुत बार जिक्र भी किया है
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: बातचीत में
1: जी
0: कि आपको बहुत संभालते भी हैं
1: जी जी
0: और उनका भी सहयोग रहता है, तो
1: बिल्कुल।
0: बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी। और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा बेटा शौर्या, द वंडरफुल गाय है। यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाहा जीवन साथी मिले, और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों, और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है, और वर्तमान में वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में, वहां पे वो कार्यरत हैं।
0: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
1: सर, मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है, और वो अभी कॉलेजेस के सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
0: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं, तो
1: जी
0: गाइडेंस तो मिल ही जाएगा घर
1: बिल्कुल सर,
0: से ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इधर आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
1: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना है मुझे, साइंस में।
0: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते?
1: नहीं, मैं दबाव में डालता हूँ। मेरा कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए हो। लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान न करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाई चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन यहाँ पे बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार, ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
0: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कौन सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है,
1: सर
0: ऐसा?
1: आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, वो ये कहता था, यार यू आर वेरी नेगेटिव आईज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आईज, अलग ही लुक है आपका एक। मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे ऐड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते हैं? तो आई वॉज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ विजन ही हैज। नहीं नहीं यार, ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए, उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूं ना उस सीरियल में, इतना रोया हूं कि मैं एक बेटी के बाद
0: हिमवान आपने
1: शिव
0: किया?
1: शक्ति में मैंने
0: जी।
1: किया, जिसमें पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद। तो मेरी दो बेटियां गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाए ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे को बेटी नहीं है, मेरा एक बेटा है, तो इतने आंसू मैंने बहाए ना सर उसमें। मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज को समझने में। मैं कहता सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव कैरेक्टर देते हो, मेरा मन करता है मैं नेगेटिव कैरेक्टर निभाऊं। तो पता नहीं उनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो कैरेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है।
0: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो हैं अच्छे से निभा पाएंगे?
1: सर अब तो मैं सारे कैरेक्टर अच्छे से निभा सकता हूँ अब तो
0: अच्छा,
1: मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना,
0: क्या बात।
1: है ना? गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना,
0: हंसा
1: ये
0: देना
1: सबसे मुश्किल काम है।
0: सबसे कठिन
1: और
0: है।
1: सबसे मुश्किल काम है, आप फिर भी वो रुला सकते हैं, आप अपनी
0: आप
1: भावनाओं से किसी
0: हाँ
1: को इमोशनल कर सकते
0: कर
1: हैं,
0: सकते, किसी बात से कर
1: किसी
0: सकते
1: बात
0: हैं।
1: कर सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि
0: जी
1: सामने
0: जी
1: वाला इमोशन हो जाए, या किसी को आप हंसा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूं, फिर ये है कि जो करूं अच्छा करूं।
0: नहीं, वो
1: क्यों
0: तो आप करेंगे ही।
1: जी
0: अच्छा, ये मिर्जापुर 3 जो है,
1: जी

0: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है?
1: मिर्ज़ा पोथी सर, एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली, किसी और चीज़ के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था उनकी कास्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्ज़ापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्ज़ापुर की जो कैरेक्टराइजेशन है मुझे लगता है कि मैं उसे फिट बैठ पाऊंगा. बोले नहीं, आप एक बना के भेजिए. तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने पढ़ा वढ़ा. अब मेरे साथ गुड लक क्या है सर, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा वाइफ, ये लोग बड़े बहुत बड़े क्रिटिक थे मेरे, तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया, तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं. सो मैंने बनाया सर भारी मन से कि नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं. बनाया भेजा, कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं. तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ये भी सर 2 दिन का करेक्टर है. मैंने कहा चल 2 दिन ही कर लेते हैं, मिर्ज़ापुर का एक नाम हो जाएगा. मैं सर सेट पर पहुंचा, सब चीज़ हो गई, मैं सब सेट पर पहुंचा. मैंने किसी पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो दे वॉज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोए हुए छोटे से, मतलब तो बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह. बोले सर ये है डायरेक्टर, जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, बोले आई एम द डायरेक्टर. मतलब तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूँ और मुझे एक्ट करना है. उसमें जो गोलू का कैरेक्टर कर रही हूँ, वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था. मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्ज़ापुर पहले 2 सीजन हो चुके हैं, तीसरे सीजन में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन. तो मैंने सर से पूछा, मैं कहा गुरमीत जी कैसे? बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा. सर किया मैंने और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की. इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के. पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी. और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा. बोले आगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 डेज ना. बोले नहीं, आपको किसने बताया? यही सुना था. बोले नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट हैं उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भाई अभी तो लखनऊ जाना है, बनारस जाना है. तो मैंने कहा हाँ, आई वाज सरप्राइज. मैंने कहा अरे ये
0: कंटिन्यूटी में है.
1: हाँ, मतलब आपको किसने बोला 2 दिन गए तो आज तो बहुत काम है आगे. तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, कह रही ये कैसे हो गया? तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे. वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही एक कल्पना में हूँ कि अच्छा अरे यार भैया तो बढ़िया होगा, अच्छा हो जाए तो बनारस में लखनऊ में आता, ये तो गुड करेक्टर बनाना लिमकाना. तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैंने कहा प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा करेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है. और मैं वैनिटी में आके मतलब यार तो मजे आ गए, तो ये
0: काम करने में मजा आया कहने
1: हाँ,
0: का
1: मतलब फिर
0: मतलब.
1: लगा यार इज अ करेक्टर बेसिकली, और करेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली. जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए इसमें. और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मजा आ जाएगा. लुक बहुत अच्छा दिया गया है, इज अ गुड करेक्टर. 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा, ऊपर
0: बिल्कुल
1: वाले चाहा
0: बनेगा,
1: तो.
0: हम आपको
1: तो
0: शुभकामनाएं देते
1: जी
0: हैं.
1: जी जी
0: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत.
1: देयर वाज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना, आप वहां पहुंचोगे जरूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है.
0: ये बात ये जीवन में जो है मायने रखती
1: ये
0: है.
1: मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है. तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम
0: फोकस
1: डूइंग,
0: करना है कि ये कर रहा
1: आई एम
0: हूं.
1: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूं और ये मैं करूंगा और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती है.
0: बिल्कुल
1: तो ये हौसला कैसे रुके?

0: तो मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों
0: जी
1: के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े किरदार
0: जी
1: किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं वो?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना, उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूं, क्योंकि फिल्में ताउम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्में करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनीवे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्टी की फिल्म थी, है बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि बहुत ज्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूजिक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है मुझे अच्छा लगा। 1 वीक मेरा काम चला उसमें, और नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन, उनको देख के काम कर। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ

0: करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े मास्टर के साथ काम कर चुका था, चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज़, अक्षय कुमार जी और दिलजीत दोसांझ जी का, एक के लिए ऑडिशन दिया था। एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दिलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे अक्षय कुमार जी, मैं तो उन्हें देखते रहेगा क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। ही सेड के आओ भाजी, अच्छा लगा ना। मैं कहा सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी आओ रिहर्सल वगैरह हुई, उनका मजा के अंदाज है जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा अलग सा लगा। मैं कहा यार मेरा मतलब हंसी उड़ा दी, मैं कहा कल पता नहीं कैसे शूट होगा, मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज है। तो मैं घर गया, मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक से उड़ाया। शी सेड के ठीक है अगर इतना ही ईगो है तो फिर घर बैठ जाओ, डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मैं कहा ठीक है जो होगा करेंगे। गया मैं सर, नेक्स्ट डे अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना वो एकदम अलग ही था। हाँ भाजी क्या हाल है, और आओ शूट करते हैं, सब क्लियर है ना। मैं हाजी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे लगा नहीं यार वो एक कंफर्ट देने का एक उनका एक तरीका है जो उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान। और मुझे वियर्ड जरूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इंपैक्ट आया ना सर, सब मजाक है बिंदास एकदम काम करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें, तो लोग उस पर हंसे उस सीन पे, तो मुझे लगा नहीं यार आई रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, आप उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है, लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़े सर वो।
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं,
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं। एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी का पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों का अनुसरण करेंगे हम सोचते हैं सर।
0: बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ
1: और करते रहेंगे। और अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर, OTT का हो, टेलीविजन का हो या फिल्म का हो, हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिले, ऐसी कामना भी करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं।
1: जी जरूर।
0: कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई करते
1: हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
0: जी सर, दंगल सॉन्ग कि माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

0: इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के चिमिशन से बोल रहे हैं। एफएम पेंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स, प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को पूरी दुनिया में बधिर समुदाय के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सांस्कृतिक भाषा को सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतीक भी माना जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार की भाषाएं उन पर्टिकुलर समुदाय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज का दिन एक ऐसा दिन है जो हमें ये याद दिलाता है कि संवाद करने के लिए सिर्फ आवाज़ की ही नहीं बल्कि एक खुले दिल और संवेदनशील नज़रिए की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बोली जाने वाली भाषाएं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं आती है, लेकिन दुनिया भर में फैले करीब 7 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग जो सुन या बोल नहीं सकते, उनके लिए ये सांकेतिक भाषा ही उनके विचारों, उनकी खुशियों, उनके सपनों की जुबान होती है। ये कोई साधारण इशारे नहीं हैं बल्कि एक संपूर्ण प्राकृतिक भाषा है जिसका अपना एक समृद्ध व्याकरण है और एक अलग प्रकार की सांस्कृतिक पहचान लिए हुए ये चलती है। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, हम यूँ कहें कि सांकेतिक जो दुनिया है उनकी, उसके द्वारा उनका सब कुछ अभिव्यक्ति का जो है सिस्टम वो चलता है और हमें भी इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए उनकी इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का, और आज के दिन हमें इसी प्रकार के संकल्प भी लेने चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में इस दिन की थीम भी बेहद खास है, बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा। ये थीम हमें झकझोरती है और

याद दिलाती है कि सांस्कृतिक भाषा सिर्फ एक जरिया नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार है, चाहे वो स्कूल की कक्षा हो, अस्पताल हो, अदालत हो या फिर हमारा डिजिटल संसार। हर जगह हमारे इन भाई बहनों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ये सम्मान और समानता के हकदार भी हैं, और किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी जो हम सब नागरिक हैं उनके द्वारा किया नहीं जाना चाहिए। किसी भी शर्त पर इसे स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करेंगे जो किसी रूप में भी मान्य नहीं है, तो हमारे जितना बुरा कोई नहीं हो सकता। आज भारत में भी भारतीय सांस्कृतिक भाषा को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने के लिए भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफ़र अभी लंबा है। हमें अपने समाज में जो प्रमाणित दुभाषियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ानी होगी और सार्वजनिक जगहों को इनके लिए सुलभ बनाना होगा, ताकि इस प्रकार की सुलभता को हासिल किया जा सके। दोस्तों, आगे भी हमारी बातें जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, अक्सर समाज में दिव्यांगता को एक सीमा मान लिया जाता है, लेकिन आज की हमारी निश्चित रूप से बातचीत है इस सोच को बदलने की। आज हम इसी रूप में तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि बीते वर्षों के मुकाबले साल 2026 में हमारे दिव्यांग युवाओं को किस प्रकार से नए अवसर मिले हैं और कौन कौन से कानूनी अधिकार उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, परिवर्तन हर एक, हम यूँ कहें कि रूढ़ी कुरीति या फिर समस्या में देखने को मिला है, और समय के साथ होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो प्रसार है वो स्वतंत्रता के बाद से आज तक निरंतर बढ़ रहा है, और हर एक समस्या का समाधान भी हम मान सकते हैं शिक्षा के द्वारा। दोस्तों, अधिकारों को मजबूत और बुनियादी रूप से उस पहुंच तक बनाना और उन युवाओं को उसी रूप में उन्हें उपलब्ध करवाना भी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में राइट्स ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर रहा, जिसके तहत दिव्यांगताओं की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। इसके साथ ही पहले जहां सरकारी नौकरियों में केवल 3% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर अब 4% कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेजों में दाखिले के लिए इस कोटे को 3% से बढ़ाकर 5% भी कर दिया गया है। यानी अब शिक्षा और रोजगार पाने का जो अधिकार है वो कानूनी रूप से और ज़्यादा मजबूती से पहुँच पाएगा। साथ ही दोस्तों, अब केवल रैंप और व्हीलचेयर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी दिव्यांग अनुकूल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि हमारे युवा तकनीक की दुनिया में पीछे न रहे और निश्चित रूप से उन्हें समानता की रूप में हर एक अधिकार, हर एक अवसर मिल सके। हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों हम बात कर रहे थे दिव्यांगजनों के अधिकार और इस प्रकार के मिलने वाले अवसरों को लेकर। दिव्यांगजन कौशल योजना 2026 जिसमें कि युवाओं को आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और हॉस्पिटैलिटी जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अगर हम पहले की बात करें तो स्किल के क्षेत्र में पहले दिव्यांग युवाओं को सिर्फ सिलाई, बुनाई और बुनियादी हस्तक्षेप तक ही सीमित रखा जा रहा था। साथ ही दिव्यांग सहारा योजना 2026, इस योजना के तहत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस आधुनिक सहायक उपकरण और प्रोस्थेटिक्स यानी कि कृत्रिम अंग आसानी से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम पहले की बात करें तो साधारण व्हीलचेयर या फिर वैसाखियों पर निर्भरता होती थी जो आसानी से उपलब्ध भी नहीं थी। साथ ही दोस्तों दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना व पेंशन में भी स्वरोजगार के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर 5 लाख से 50 लाख तक का लोन और राज्यों में इसी प्रकार से 1000 से 4000 तक की मासिक पेंशन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से मिल रही है जो भी उनके लिए काफ़ी सहायक है। पहले बैंकों से लोन लेना और कागजी प्रक्रिया बेहद ही पेचीदा थी। दोस्तों इस तुलनात्मक रिपोर्ट से साफ है कि आज का जो दिव्यांग युवा है सिर्फ सहानुभूति का पात्र नहीं बल्कि वो देश की मुख्य आर्थिक और सामाजिक जो धारा है उसका एक अनिवार्य हिस्सा बन रहा है। आज सरकारी इमारतों के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी उनके लिए अपनी राय सुगम बना रहा है। इसी प्रकार की निश्चित रूप से हमारे द्वारा भी जागरूकता की पहल की जा सकती है कि जिसमें कि हम उन युवाओं को अपने अधिकारों और अवसरों से अवगत कराएं, उन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि UDID यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनवाने के लिए भी प्रेरित करें ताकि वह इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। निश्चित रूप से दोस्तों हमारी मानसिकता में दिव्यांगता होती है, किसी भी शरीर बॉडी में दिव्यांगता नहीं होती, बस हमारी सोच सही होनी चाहिए हर एक पर्सन के प्रति और वही हमारा शिक्षित होने का प्रमाण है और हमारा एक अच्छा मानव और एक नागरिक होने का भी प्रमाण है। दोस्तों यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शशत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर की, जिसमें रोजगार के अवसर आज के समय में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। निजी या फिर सार्वजनिक जो लिमिटेड कंपनियां हैं, उन्हें क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए सही स्किल्स और सही दिशा का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज के समय की आवश्यकता भी है। दोस्तों, कॉरपोरेट कंपनियों में अलग अलग बैकग्राउंड के युवाओं के लिए कई तरह के विभाग होते हैं। अगर हम बात करें आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर और क्लाउड एक्सपर्ट्स के रूप में कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही बिक्री और विपणन के क्षेत्र में, यानी कि सेल्स और मार्केटिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो है, उसके साथ ही डिजिटल मार्केटर और कॉरपोरेट सेल्स मैनेजर के रूप में भी अलग अलग प्रकार के पद होते हैं। इसके साथ ही मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में रिक्रूटर, एचआर मैनेजर और कॉरपोरेट ट्रेनर के रूप में भी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग से माध्यम से इस प्रकार की पोस्ट पर कार्य किया जा सकता है। साथ ही फाइनेंस और अकाउंट्स के क्षेत्र में सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, स्टॉक मार्केट ट्रेडर के रूप में भी कार्य किए जा सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट और ऑपरेशंस के क्षेत्र में भी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक बीपीओ एग्जीक्यूटिव, बैंक ऑफिस, साथ ही लॉजिस्टिक सुपरवाइजर के रूप में भी अलग अलग प्रकार की पोस्ट अलग अलग क्षेत्र से आने वाले युवाओं के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, हम यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कॉरपोरेट क्षेत्र के अलग अलग प्रकार की पोजीशंस और उसमें उपलब्ध होने वाले हम सब युवाओं के लिए अवसरों की। निश्चित रूप से जरूरी योग्यता और स्किल्स भी बहुत ही रिक्वायर्ड है। कॉरपोरेट जगत एक प्रोफेशनल जगत है, जहां आपकी डिग्री के साथ साथ आपके काम के तरीके को भी बहुत महत्व दिया जाता है। निश्चित रूप से आज के समय में सबसे जरूरी है जो आपका काम करने का तरीका है और आपका व्यवहार है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी बातचीत करने और ईमेल लिखने की क्षमता होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर और तकनीक का ज्ञान, एमएस एक्सेल, वर्ड और बुनियादी इंटरनेट टूल्स की समझ होना भी आज के समय में हर एक कार्य को करने के लिए बहुत ही जरूरी है। समस्या सुलझाने की जो क्षमता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें भी एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि दबाव में काम करने और टीम के साथ मिलकर लक्ष्य को पूरा करने की योग्यता इसी के द्वारा हासिल की जा सकती है। साथ ही कंप्यूटर और तकनीक के ज्ञान को भी उस रूप में हमें अप्लाई करना जरूरी है, यानी कि अप्लाइड तरीके हमारे द्वारा सीखे जाने बहुत ही आवश्यक है। कॉरपोरेट क्षेत्र में किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद से हम इस क्षेत्र में घर बैठे हजारों कंपनियों में आवेदन कर सकते हैं और अपना जो स्किल है उसको प्रूफ करके उस क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार की कंपनियों में अपना जो एक्सपर्ट फॉर्म है उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हुए जॉब प्राप्त कर सकते हैं और कई लोगों को इससे जोड़ भी सकते हैं। साथ ही स्टार्टअप जैसे अलग अलग प्रकार की हम उस एक क्षेत्र में आगे बढ़कर काफ़ी लोगों को रोजगार संपन्न या फिर हम यूं कहें कि आत्मनिर्भर भी बनाने की ओर अपनी पहल कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे कॉरपोरेट और रोजगार की। दोस्तों, निश्चित रूप से जो आज का हमारा विशेष दिवस है, उसको लेकर हमें जागरूक होने के साथ साथ दूसरे इस प्रकार के लोग जो इसको लेकर उतना जागरूक नहीं है या फिर उसे हम यूं कहें कि उतना सीरियसली नहीं लेते, उन्हें भी हमें सिखाना होगा कि जो दिव्यांग लोग हैं वो हमारे ही समाज का हिस्सा है और किसी भी रूप से उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए। साथ ही इस प्रकार के लोग जो जन्म के बाद किसी बीमारी से ग्रसित होकर या फिर किसी एक्सीडेंट के शिकार होकर भी इस प्रकार से ग्रसित हो गए हैं, तो उन्हें भी हमारे समान नज़रिया और समान अवसर देने चाहिए। इसी प्रकार के संकल्प के साथ आज का युवाणी बस यहीं तक। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पणिहारी।

0: आपनो कार्यक्रम सुनन वाली सगली बहना ने अर्चना चौहान रा घना हेतु राम राम। और बहना कहीं हालचाल है, कहीं काम का शुरू हुआ है? और हमेशा उड़ीक रहे कार्यक्रम में अपनी बहना की कहवे पचमाने भी उड़ीक रहे का आप भी सुनो अपनो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगे। एक दूसरा से जुड़ाव वही बनियोड़ा है और वही जुड़ाव अपने राखण बहना, क्योंकि कार्यक्रम एक एड़ो होया करे चाहे आप कठे भी देखा तो एक थोड़ा सा आभास हो जावे कि कोई अपन वास से बोल रही है, कोई अपने काम री बात बोल रही है, किन वास से आप जरूरी की कहना है, तो वह अपने सामने अच्छा विचार, अच्छा आचार, अच्छी कोई भी बात है जिको कि ग्रहण कर सका, एड़ी बात एड़ा संवाद एड़ा विचार तो कहीं कहना। अपना कार्यक्रम ही एड़ो है बहना कि आप सबरो स्नेह, आप सबरो आचरण, आप सबरो प्रेम ओ ही खींच लवे, आप सब एक दूसरा से जुड़ोड़ा रहो और कोई भी काम हो उसमें आप एक दूसरा रो सहयोग लेता रहो तो इनसे बड़ी बात कही। देखो अपने कार्यक्रम में बहना खासकर आपने क्या करे कि भाई महिलाओं रही कार्यक्रम में आप कई तरह रे बात करिया करा तो मैं सोच ला कि कभी कोई काम की जरूरत भी हो जाए तो आप भाई लोगों ने अपने परिवार रे अन्य सदस्य ने भी ध्यान पड़िया करे कि अपनी कई भूमिका है ना। जो परिवार में क्या करे कि महिला परिवार री धुरी होया करे, बिल्कुल सही बात है। एक माँ है जो एक पत्नी रो है, एक बेटी रो, एक बहन रो, एक जो भी उन्हें मिले सम्मान उन वो सम्मान करती हुई दूसरा ने सम्मान रखती हुई बहुत बड़ी आपकी भूमिका, आपके कार्य क्षेत्र की भूमिका, आपके जो संस्कार है उन्हीं भूमिका जिको समाज में स्थान बनाना है वे सब भूमिका निभावे है ना। साथ देवन वाला आत्मसम्मान करन वाला री जरूरत है कि वो किन तरीकों वनो सम्मान करिया करे, क्योंकि बहना कई बार आप देखा हाँ आज बदलता क्षेत्र में, बदलता शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे राजनीति रो क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई बुनाई जो भी बहना रो काम है उनमें आज अग्रसर है, हर कार्य में वह तत्पर है, चाहे बच्ची हो, बड़ी हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो, उनमें आप कोई भी सम्मानजनक बात मैंने प्रति करा तो एक सम्मान अपने पूरे दिमाग में आना चाहिए, एक सम्मान आँखें में आना चाहिए, एक सम्मान मैंने प्रति चाहे कोई भी रूप में हो वह उन्हों करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज जी का बदलता रूप देख रहे हैं आप उनमें वो लग रहे हो कि सम्मान जी को है, खासकर महिलाओं रो दिनों दिन थोड़ो सो सोचे नहीं है, मन आवे जी को भी कह दे, कई बार कहते हैं कि हाँ ठीक है काम कर रहे हैं तो दो कर रहे हैं, कटे बारह आप काम करा तो कहीं तनख्वाह कम मिले बराबर मिल रहा है आपने वो करना पड़े, मतलब ठीक है एक भाषा का जो प्रयोग आपने करना चाहिए वो थोड़ा सम्मानजनक हो खासकर महिलाओं वास्ते तो कितनी बड़ी बात है। आज आप सम्मान की बात करा अपनी खुतरी भूमिका आप किन तरीकों निभावा आप सोचो, आप किन तरीकों देख रहे हैं कि कोई भी बहन किन्हीं भी कार्य प्रति इतनी सजग हो जावे कि वह हमेशा तत्पर रहे कि मैंने जी को कार्य दियो है वो मैं किन तरीकों करूं और किन रो परिणाम केड़ो वेला वो बहुत आगे लारे सोचना पछ कार्य करिया करे। और चाहे वो घरेलू कार्य हो, बाहर रो काम हो, कोई भी काम हो थोड़ी जिम्मेवारी कर लेवे और जिन्हें भी आप रो परिणाम बताने की तत्परता रखे सबों पहले अगर उन्हें बतावे और अगर वे अपना विचार वर्ण समय व्यक्त नहीं करे तो क्या करे ना कि एक घुटन हो जावे, सोचे कि अरे मैं जिको इतना बड़ो काम करियो पर फिर भी उन्होंने भी मैंने कोई सम्मान नहीं मिलियो या उन्होंने मैंने कोई जो अप्रिशिएट करया करे लोग कि एक शाबाशी दिया करे, एक उनके विचार ने समझता हुआ उन्हें क्या करे कि वाकई बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा शब्दारी तो बात है उन्हें अगर आप कह दो तो कितना बड़ा उन्हें मिला कर। आज बच्चों घर में कोई भी काम करे या छोटो सो बच्चों यार एक पानी लोटो लेन दादा दादी जी को ना जाओ तो भी आप कितना प्यार हूँ कितो स्नेह उन्हें हाथ फेरने कहवा कि बहुत अच्छी बात है कि तू एडे कर रहा है। इन्हें तरह अगर आप भी कि नहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं तो थोड़ो सो कहन में कही जावे, दो शब्द कहन में कही जावे उन्हें कही होया करे कि जी को कार्य वह कर रही है जिमें निपुण है उन्हें थोड़ी सी अगर उन्हें सांत्वना मिल जावे कि चलो मैं जी को कार्य कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है या हमारे कार्य ने थोड़ी सी लोगों ने मायने समझ बैठी है और उन्हें वे समझ पा रही है। इन वास्ते ज़रूरी है कि कोई भी काम रो अप्रिशिएट चाहे वो बच्चा हो, बड़ो हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो उन्हें आप थोड़ा सो कर दो तो वो जी को कार्य है उनमें और वह शालीनता लावेला और उनमें शार्पनेस लावेला कि किन तरीकों मैंने और काम करूँ तो मैंने हो सके और अच्छो परिणाम सामना आवे। तो छोटी छोटी बात रो ध्यान रखनो अपनी जी की भूमिका आप निभा रहे हैं पर सोच समझना आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आगे वाले ने भी तत्पर रहना चाहिए कि अपने काम रो सम्मान देना चाहिए। तो बहना कही है कि आप बातचीत भी कर रहे हैं, हाँ अपना कई काम भी है, पर जरूरी है आप गीत भी सुना। तो पहले आप सुना ला संदेश, उन्हें बात सुना गीत।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

तो बहना, अगर आप सुने है कि सीमा मिश्रा और साथर गैडो और आप बातचीत कर ही रहा कि कोई भी तरह इन्हें तरह बहना, अगर आप देख रहे हैं कि डिजिटल युग बहुत चल रहा है ना। डिजिटल मतलब आप फोन माते कोई भी चीज़ ने पढ़ा लिखा या कोई भी चीज़ हो फटाक से अपने कने आ भी जावे कि भाई आप पूछ ला जिकी भी समस्या है उन अपने समाधान सिर्फ और सिर्फ सेकंड नारे मायने समाधान हो जावे। पर कदे आप वो भी सोचा कि बहुत अच्छी बात है डिजिटल साक्षरता, आप सोचा कि बहुत अपन काम की चीज़ है, पर फिर भी आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग ने भी चलावा, जो आजकल कही छोटी छोटी सी कोई जोड़ करनी हुए, छोटा सा कोई पया जोड़ना हुए या छोटा सा कहीं भी करना, फटाक से गूगल माते वो करी, थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलावा तो मैं कही कि अपना दिमाग भी तो दौड़ी, आप देख रहे हैं फोन माते उन बावजूद भी अगर थोड़ा आप स्वयं भी प्रयास करा तो जिकी पहली रही अपनी प्रैक्टिस है कि आप कितना फोन नंबर कितना जना रहा, खासकर लैंडलाइन फोन तो नंबर अपने अधिकतर याद रहता और मोबाइल नंबर भी कई याद रहता, पर आजकल फीडिंग फोन में कर ला तो कही कोई भी चीज़ आप भूल जावा,

0: और तो और घरवाला का नंबर भी अपना याद नहीं रहे, कई बार ईश्वर ना करे अड़ी कोई मुसीबत आ जाए तो आप सोच भी नहीं सका। अरे डिजिटल युग है, एक पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, उन्होंने बहुत ही अपन कने अच्छो परिणाम मिले करे, पर फिर भी इन दौरान आपने भी आपरो जी को दिमाग है, आपरो जी को स्तर है, उन्हें भी संजोग रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप छोटा मोटा नंबर या छोटा मोटा हिसाब नहीं कर सकाला तो हमेशा दूसरा माता डिपेंड रह वाला, कभी फ़ोन चार्ज वे नहीं वे, कभी अपन कन फोन नहीं वे, तो कहीं आप सोचाला कि अरे आज तो है ही नहीं, आप किन तरह हिसाब करा लाया, किन तरह कहीं, मतलब कोई भी बात वे जी कि आप सोचने में दिमाग चलावा ही नहीं, अड़ो होने नहीं चीज़ है। असल में पहले आप अपने दिमाग की कसरत पूरी करो, आपने लगे कि हाँ बिल्कुल डिजिटल युग में तो अपन है ही है, हर चीज़ है, हर काम अपना एक सेकंड में, पर फिर भी कई आज आप देख रहे हैं अड़ा लोग भी है जिको कि हर काम उंगले माते है, हर काम आप एक सेकंड में करया करें, तो इन रूपी अपने ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बहना आप चलें अगले गीत की तरफ, पहले आप ले वाला वापस ब्रेक।
1: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

तो बहना एक सुरीलो सो गीत ममता सिंह रे साथे आप और सुनियो। और आप बात ही कर रहा हा कि भाई किन तरह हूँ आप अपना काम या डिजिटल साक्षरता है, डिजिटल युग है, उनमें आप किन तरह एडजस्टमेंट करा, एक अपन वास्ते बहुत ही बड़ी बात हो जाए। बहुत अच्छी बात है बहना, अपनो कार्यक्रम ही ऐड हुई है कि आप अच्छी बात भी करा, अपन लोगों के साथ समझ में भी करना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं, अगर आप अपनी खुदरी बात करा तो जिका बे त्यौहार और सीजन आ रहा है, कई विज्ञापन ऐड आ रहा है, कई आप पत्रिकाओं में ऐडी चीज़ आप देख रहे हैं कि अपन लागे और इतनी सस्ती चीज़, अरे चाल ने देखना चाहिए, अरे एक नहीं चाल लाने चाहिए, जिकी चीज़ लानी चाहिए वह तो आप लवा नहीं, और फालतू चीज़ आप ले रह जावा और पया वेर वे वेस्ट हो जावे। इन वास्ते थोड़ो सो आप संयम रखो, माना कि अपने काम की चीज़ बहुत है और आप जाने जावा, पर फिर भी भाई मानव स्वभाव है कि इनकी तो अपन पसंद आ जावे, आप दूसरी चीज़ भी ले ला, पर एक कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखा नहीं कि सीज़न तो है अबार के त्यौहार आ रो, और उनमें आप सोचा कि अरे इनमें इतनी छूट है, इनमें इतनी सेल लग रही, इनमें वो चाहे कपड़ा हो, बर्तन हो, ये है जिको अपन घरेलू सामान हो या जिकी अपनी पसंद की चीज़ें उनमें इन्हें, पर फिर भी अगर अपने चार चीज़ पसंद आई है तो आप एक ही लो, उन्हें उपयोग करो, अपने लागे सही तो आप फिर ले लो। कई है कि कई बार उन सेल सेल चक्कर में या सस्ती चीज़ें देखने में चक्कर में कई बार आप घाटा रो सौदा में आ जावा, और पचे सोचा ओहो समझ उबारा है भाई, वो तो काम अपन करना ही नहीं चाहिए, बाद में पछताया हूँ, कई वे चिड़िया चुगी खेत वो तो पया गया अपने। और एक कई बात है जिको आप कर सका लेकिन फिर भी अपना दिमाग नहीं चले, कई बार आप सोचा अरे भाई एक बार हो गया कोई बात नहीं, कि नहीं और साथ चला आप उन्हें समझाने की कोशिश करा और वो नहीं समझे, ठीक है एक बार नहीं दो बार, जब उन्हें खुद माते पड़े तो लगे कि वाकई गलती तो हुई है। तो आ समझ आपने रखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कोई भी काम के प्रति थोड़ा सा सोच विचार करना, थोड़ा अपने बजट के अनुसार, थोड़ी अपनी जिकी आप कर रहे हाँ कीमत के अनुसार, अगर आपों जिको बदलाव लाने चाहवा उनमें जरूरी है कि आपकी सोच रो बदलनो, है ना। इन वास्ते कोई भी अड़ो काम करो जिको सोच और समझू अच्छो हो सके। तो चला आप एक और अच्छा सा गीत तरफ।

बहना घड़ी कर रही इशारों आपसू इजाजत ले रही तो आपकी बहन अर्चना ने दिलासे स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और हमेशा आगे बढ़ो। राम राम।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी। हम आकाशवाणी नागौर के छिमे चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें

0: और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सके। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा तियास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस एफएम फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप में अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म नगीना के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दिए लता मंगेशकर ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चेयरमैन चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म नाम से। इस गीत को आवाज़ दी है पंकज उदास ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बुंगुर खां और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। दोस्तों लोकगीत सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 23 सितंबर 2026 को फोन इन का विषय है रबी फसलों की बुआई, पूर्व खेत की तैयारी। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव सिंह मीणा, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय नागौर। आप भी अपनी खेती बाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज दिनांक 23 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः नोट कर लीजिए, 240-168 और नागौर के एसटीडी कोड है 015-82। अब सुनते हैं ये लोकगीत।

तेरी चक्करी आपरो के हर अश्क वाली घर आग करनी मां के हर अश्क वाली

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे बंगूर खां और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिमे चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वीब्स, प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:45 से आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ये लॉटरी निकाली गई। हर श्रेणी में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशन में ये प्रक्रिया पूरी की गई। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में केवल 4 सीट अनारक्षित रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में अलग अलग कोटे से कुल 11 महिला प्रधान बन सकेंगी।
2: जो डायरेक्शंस आए थे उसके अनुसार जिला परिषद सदस्य के 57 वार्ड्स के लिए आज रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमने की है लॉटरी के माध्यम से, और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे के साथ साथ पंचायत समिति प्रधान की 22 प्रधान हैं, उनकी जो रिजर्वेशंस है उनको हमने लॉटरी के माध्यम से की है। इसके अलावा पंचायत समिति सद के वार्ड्स है, टोटल 386 वार्ड्स की जो रिजर्वेशंस है उनके पॉपुलेशन के अनुसार और लॉटरी के बेसिस पे एससी एसटी ओबीसी और साथ साथ महिलाओं के सीट की रिजर्वेशन आज हमने संपन्न की है।
1: प्रदेश में अभी पंचायत चुनावों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किंतु आरक्षण तय होने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। उदयपुर की 20 पंचायत समितियों में से केवल एक सीट अनारक्षित हुई है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग से प्रधान बनेगा। हनुमानगढ़ जिले की 10 पंचायत समितियों में अलग अलग वर्गों के लिए प्रधान पद आरक्षित किए गए हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के बाद कल उपखंड स्तर पर वार्ड पंच और सरपंचों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में 10 अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते हुए हैं, इनमें से 4 राजस्थान से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री आज ब्यावर जिले के जैतारण में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी, यमुना, नर्मदा, किशाऊ बांध परियोजना समझौते से प्रदेश में पानी की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय चुनावों से समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव के बाद सहकारिता चुनाव करवाने की बात भी कही। इसके बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचे। श्री शर्मा ने बाबा रामदेव पैनोरमा से मंदिर तक पदयात्रा में शिरकत की। जयपुर में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेंशन अदालत लगाई गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में 13 पेंशनर्स को पीपीओ प्रदान किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सीएमएचओ कार्यालयों में उपस्थित पेंशनर्स से संवाद भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जिलों में भी पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस योजना के तहत अधिक ओपीडी भार वाले बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर बनाया जाए। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान का पेंशन सिस्टम देश की बेहतरीन पेंशन सिस्टम में से एक है। पेंशनर्स के अधिकारों और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।
3: पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं, इसको टाइम बाउंड पीपीओस जारी करने के लिए आज नवाचार किया गया है और डिजिटल पीपीओस जारी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात भी कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट में कि हम लोग रिटायर होते हैं चित्तौड़ से और बसते हैं जैसलमेर में, तो हमारा पीपीओ इंटरऑपरेबल रहना चाहिए, तो उसी ट्रेजरी के साथ जोड़ा जाए। वो भी आज बजट डिवीजन ने ये बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीओस का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, तो एक ट्रेजरी से दूसरा ट्रेजरी में ट्रांसफर होगा। और पेंशन फॉर्म भरने में सिंप्लीफिकेशन काफ़ी किया है और पेंशन ग्रीवेंसेस टाइम बाउंड मैनर में लिए जा रहे हैं।
1: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्य के दो दिन के दौरे पर है। लोकसभा सांसद बृहदहरि महताब की अध्यक्षता वाली इस समिति ने आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा की गई और विभिन्न विकास संकेतकों की प्रगति पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अनुसार संजीव भाटिया को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, जिसमें आयुर्वेद की उपयोगिता, समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली में इसकी भूमिका पर विचार साझा किए गए। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि सूर्य नमस्कार को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी बचपन से ही योग और प्राणायाम का अभ्यास कर सके। उन्होंने कहा कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हर बीमारी के इलाज में कारगर है।
4: आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है, ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं, जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे।
1: आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य

0: 2016 से शुरू हुई इस नीतिगत पहल ने भारत की उद्यमशीलता और नवाचार पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। दिसंबर 2025 तक 2 लाख से ज्यादा DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR इस परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं। साथ ही 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आ रहे हैं। ये देश के ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाट रहे हैं। इससे ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिल रहा है। साथ ही महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं। स्टार्टअप्स रोजगार सृजन के साथ ही नवाचार और वैश्विक बाजार एकीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत तकनीकी सहायता से 200 से ज्यादा गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि साइबर सेल और पुलिस की विशेष टीम ने इन्हें तकनीकी माध्यम से ट्रैक किया।
2: सवाईमाधोपुर पुलिस द्वारा समस्त सवाईमाधोपुर में जितने भी हमारे मोबाइल फोन CAI पोर्टल पे जिसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उनमें से करीब 260 मोबाइल फोन को हमने बरामद किया है। तथा हमारा आगे भी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिसका भी फोन खोया है वो CAIR पोर्टल पे अपने मोबाइल को जरूरी दर्ज कराए। इसमें जो हमारी मुख्य भूमिका रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है सवाईमाधोपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को।
1: और अब बात खेल जगत की। जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। प्रदेश में मॉनसून विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही गर्मी और उमस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसलमेर में पिछले कुछ दिनों से पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कल अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल PPO जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है संदीप केड़िया ने। नगरीय निकाय चुनावों में जिले के 19 निकायों में अध्यक्ष पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 8 और एक निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 6 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 निकायों में जीत दर्ज की। खेतड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की गीता देवी सैनी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। जिले में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इससे पहले अभियान की तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में आमजन, किसान, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखने की बात कही। अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आशीर्वाद

0: दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने दीप जलाकर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अलसीसर ग्राम पंचायत के सरोवर परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महिलाओं ने मंगल गीत प्रस्तुत किए। विश्व ओजोन दिवस पर कंजर्वेशन रिजर्व बीड झुंझुनू में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर ओजोन परत के संरक्षण, पौधरोपण और ऊर्जा बचाने का संदेश दिया। इसके बाद बीड क्षेत्र में पौधे लगाए गए। विद्यार्थियों ने वन क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय वनस्पतियों, पक्षियों और वन्य जीवों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार सैनी ने पर्यावरण संरक्षण में समाज की भागीदारी की आवश्यकता बताई। जिले में युवाओं को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में क्विज में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी और माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की समीक्षा की गई। शिक्षा, सामाजिक न्याय, RCT, ITI और पॉलिटेक्निक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से युवाओं का पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति और दवाओं तथा जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को दवा बाहर से खरीदने या जांच बाहर से कराने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। सरकारी आपूर्ति नहीं होने पर नियमानुसार स्थानीय स्तर पर दवा उपलब्ध कराने को कहा गया। मरीजों को जांच रिपोर्ट व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। कोलसिया स्थित टाई एंड डाई क्लस्टर में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इसमें 80 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया। उन्हें योजनाओं की सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पारंपरिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में AI और डिजिटल माध्यमों की भूमिका भी समझाई गई। नशा मुक्त राजस्थान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शेखसर और तोलियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के साथ बाल अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें नशे से दूर रहने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। स्पर्श अभियान के तहत प्रभारी सचिव नवीन जैन ने करीब 1300 विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और बाल शोषण से बचाव जैसे विषयों की जानकारी दी। अभियान के समन्वयक डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू हुआ यह अभियान अब तक 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। झुंझुनू शहर में नगर परिषद की ओर से साफ सफाई और रखरखाव के काम किए जा रहे हैं। सड़क किनारे जमा मिट्टी और मलबा हटाने के साथ ही डिवाइडरों की सफाई की गई। नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि सड़कों के पैचवर्क और नालियों के फेरो कवर से जुड़े काम भी किए जा रहे हैं। पिलानी स्थित CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। संस्थान की स्वदेशी तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आवता पंचायत चुनाव में प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो, पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल BPO जारी करण री कोशिश करी जा रही है। आयुर्वेद दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोणा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम रखी चिया। और एशियाई खेलां रा पांचवां दिन भारत 5 तमगा जीत्या। नामी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू चांदी रो तमगो जीत्यो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायत चुनाव बाबत प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य सारू आज आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। इन तेत हर श्रेणी में महिलावां सारू आधी सीटा आरक्षित रखी ची है। जयपुर जिला री 22 पंचायत समितियां में केवल 4 सीट अनारक्षित रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि जिला में न्यारा न्यारा कोटाओं 11 महिला प्रधान बन सकेला।
2: जो डायरेक्शन आए थे उसके अनुसार

0: जिला परिषद सदस्य के 57 वार्ड्स के लिए आज रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमने की है लॉटरी के माध्यम से, और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे के साथ साथ पंचायत समिति प्रधान की 22 प्रधान हैं उनकी जो रिजर्वेशन है उनको हमने लॉटरी के माध्यम से की है। इसके अलावा पंचायत समिति सद के वार्ड्स है टोटल 386 वार्ड्स की जो रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के अनुसार और लॉटरी के बेसिस पे एससी एसटी ओबीसी और साथ साथ महिलाओं के सीट की रिजर्वेशन आज हमने संपन्न की है।
1: प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव रो ऐलान नहीं करी जियो है, पर आरक्षण ते वेवनसा गई चुनाव लड़वारी मर्जी राखण वाला री हलचल बधवारा आसार है। उदयपुर री 20 पंचायत समितियां में केवल एक सीट अनारक्षित रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सलुम्बर और प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति तबका रो उम्मीदवार प्रधान बनेला। हनुमानगढ़ जिला री 10 पंचायत समितियां में न्यारा न्यारा तबका सारू प्रधान पद आरक्षित करी चिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि सरकार प्रदेश में पानी री परेशानी आगी करण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वह आज ब्यावर जिला रा जैतारण माए राखी जाए एक कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि हाल ही माए देश माए न्यारा न्यारा राज्यां बीच पानी रा बंटवारा उ जुड़िया 10 करार करी चिया है, जा मायू 4 राजस्थान नु जुड़िया है। श्री शर्मा कहो कि ईआरसीपी यमुना नर्मदा किशाऊ बांध परियोजनाओं जुड़िया करार उ प्रदेश माए पानी रे कमी दूर फैला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन रिसोच रातेत कराई चा नगरीय निकाय चुनाव समय और श्रम दोनों री बचत भी है। वह पंचायत चुनाव पाछे सहकारिता चुनाव करावन री बात ही कही। इन पाछे मुख्यमंत्री रामदेवरा माए बाबा रामदेव पेनारोमाऊ मिंदर ताई निकाली जी पैदल यात्रा माए शामिल भया। श्री शर्मा बाबा रामदेव मंदिर माए पूजा अर्चना कर जनता री खुशहाली री कामनाई कीनी। जयपुर माए आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पुलिस और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग री पेंशन अदालत लगाई ची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य भवन माए पेंशन लेवन वाला 13 जना ने पीपीओ दीना। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राज्य रा न्यारा न्यारा सीएमएचओ दफ्तरा माए मौजूद पेंशनरा सागे बातचीत ही कीनी। इस मौके मुख्य सचिव कहो कि पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल पीपीओ जारी करण री कोशिश करी जा रही है। वह आरजीएचएस रातेत मरीजा री 32 तादाद वाला अस्पताल माए पेंशन लेवन वाला सारू न्यारा काउंटर बनावन रा हुकम ही दीना। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मुख्य सचिव कहो कि राजस्थान रो पेंशन सिस्टम देश रा बेहतरीन पेंशन सिस्टम में शामिल है। वह कहो कि पेंशन लेवन वाला रा हक और वारा स्वास्थ्य री हिफाजत ते करण सारू राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
2: पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं, इसको टाइम बाउंड पीपीओ जारी करने के लिए आज नवाचार किया गया है और डिजिटल पीपीओ जारी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात भी कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट में कि हम लोग रिटायर होते हैं चित्तौड़ से और बसते हैं जैसलमेर में, तो हमारा पीपीओ इंटरऑपरेबल रहना चाहिए, तो उसी ट्रेजरी के साथ जोड़ा जाए। वो भी आज बजट डिवीजन ने ये बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीओस का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, तो एक ट्रेजरी से दूसरा ट्रेजरी में ट्रांसफर होगा। और पेंशन फॉर्म भरने में सिंप्लीफिकेशन काफ़ी किया है और पेंशन ग्रीवेंसेस टाइम बाउंड मैनर में लिए जा रहे हैं।
1: लोकसभा सदस्य भर्तहरि महताब री सदारत वाली वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्य रो 2 दिन रो दौरो कर रही है। समिति आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा महकमा रा आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। इस दौरान राज्य में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रो जायजो लियो चियो। भारतीय जनता पार्टी न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां सारू पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियां री नियुक्ति कीनी है। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रे मुजब संजीव भाटिया ने राजस्थान रा प्रभारी बनाई चिया है। सतीश पूनिया ने जम्मू कश्मीर और पंजाब रा प्रभारी बनाई चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुर्वेद दिवस रे मौके आज प्रदेश में आई न्यारी न्यारी छोड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाई चिया और जाग जगावन रा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर में राखी चिया राज्य स्तर रा जलसा में आयुर्वेद री उपयोगिता समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली में आयुर्वेद री भूमिका रे बारा में विचार करी चियो। इ मौके आयुर्वेद विभाग रा प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार कहो कि सूर्य नमस्कार ने स्कूलां री पढ़ाई रो हिस्सो बनायो जा सके है, जिणो विद्यार्थियों ने बालपना उई योग और प्राणायाम रो अभ्यास करन रो सुबीतो मिल सके है। वह कहो कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हर बीमारी रा इलाज में कारगर है।
3: आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है, ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे।
1: कार्यक्रम रे दौरान आयुर्वेद रा हलका माय बेहतरीन काम करन वाला वैद्यां और नर्सिंग कर्मचारियां समेत दूजा कर्मचारियां रो मान करी चियो। स्टार्टअप इंडिया पहल लारला 10 साल माय देश माय उद्यमशीलता रो नुवो पाठ शुरू कीनो है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा तहत स्टार्टअप री शुरुआती माली और मार्गदर्शन उ जुड़ी जरूरत पूरी करण सारोई सीड फंड योजना और पोर्टल चलाया जा रहा है। पेश है केंद्र सरकार री खास पहल स्टार्टअप इंडिया रे बारा माय एक रिपोर्ट।
4: देश माय करीब 10 साल पहले कारोबार ने बधावो देवन सारू स्टार्टअप इंडिया री शुरुआत करी जी ही। साल 2016 माय शुरू हुई नीतिगत पहल देश री उद्यमशीलता और नवाचार माथे बदलाव लावण वालो असर डालियो है। दिसंबर 2025 ताई 2,00,000 हूं बत्ता DPIIT मान्यता मिल्योड़ा स्टार्टअप सागे भारत दुनिया रा सबु मोटा स्टार्टअप इकोसिस्टम रा तौरू मजबूतियों सामी आयो है। बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR ई बदलाव माय अगाड़ी रहा है। इस आगे आधाओं पत्ता स्टार्टअप सब टीयर 2 और टीयर 3 शहरा माय पनप रहा है। इनु गावाई हल्का माय काम कमाई ने बधावो मिल रहो है। इस आगे महिलावारी अगुवाई वाला स्टार्टअप क्षेत्रीय रूपू संतुलित विकास रा खास चालक रा तौरू सामी आ रहा है। स्टार्टअप्स नौकरी धंधा रा मौका बधावण सागे ही नवाचार और वैश्विक बाजार ने एक करण ने ही बधावो दे रहा है। न्यूज डेस्क को सलेहा गाजी।
1: सवाई माधोपुर जिला में पुलिस गम्योड़ा मोबाइल फोन री बरामदगी सारू खास अभियान चलार 200 बत्ता गुमशुदा मोबाइल बरामद की ना है। SP ज्येष्ठा मैत्रेयी बरामद मोबाइल फोन वारा असली मालिका ने सौंप दी ना। वे बतायो कि साइबर सेल और पुलिस री खास टीम तकनीक काम लेर मोबाइल बरामद की ना।
5: सवाई माधोपुर पुलिस द्वारा समस्त सवाई माधोपुर में जितने भी हमारे मोबाइल फोन CAI पोर्टल पे जिसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी उनमें से करीब 260 मोबाइल फोन को हमने बरामद किया है। तथा हमारा आगे भी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिसका भी फोन खोया है वो CAIR पोर्टल पे अपने मोबाइल को जरूरी दर्ज कराए। इसमें जो हमारी मुख्य भूमिका रही है इसका पूरा श्रेय जाता है सवाई माधोपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को।
1: अरे वह बात खेल कूदरी। जापान माय चल रहा एशियाई खेला माय बोझ ऊंचावण री होड़ भारोत्तोलन माय भारत री मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग माय चांदी रो तमगो जीत लीनो है। भारत रा जय मीणाई आज सॉफ्ट टेनिस रा एकल मुकाबला माय कांसा रो तमगो जीत और इतिहास बना दीनो। निशानेबाजी री स्कीट होड़ रा महिला और पुरुष वर्ग माय भारत ने कांसा रा तमगा मिलिया। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल री टीम 346 अंक हासिल कर और कांसा रो तमगो जीत्यो। महिला वर्ग में माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो री तिकड़ी देश सारू कांसा रो एक और तमगो हासिल कीनो। भारत हाल ताई सोनारो 1, चांदीरा 5 और कांसा रा 6 तमगा समेत कुल 12 तमगा हासिल कर लीना है। प्रदेश में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुए जावण पाछे पारो ओजू चढ़वा लग्यो है, जैसलमेर में लाडला कुछ दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस आरएसआर दर्ज करियो चाहियो है। काल सबू बत्तो तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस में पीछियो। बीकानेर बाड़मेर और चूरू में दिन रिभगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे करीब रिकॉर्ड करीचियो। मौसम विभाग रे मुजब जोधपुर जयपुर अजमेर और पिलानी समेत घनखरठोणा तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। प्रदेश में आवता पंचायत चुनाव में प्रधान जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली ची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल पीपीओ जारी करने की कोशिश करी जा रही है। आयुर्वेद दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारी न्यारी थोड़ा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम रखी चिया। और एशियाई खेलों का पांचवां दिन भारत 5 तमगा जीतिया। नामी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू चांदीरो तमगो जीतियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार
1: चौपाल माते बिराजा थका हैं किसान भाई ने आप रे विष्णु भरा घने मन राम राम। भाई देखो जद भी चौपाल का नियामा तो मन रे माइन कई एड़ी बात रेवे के करा ला लारला दिनारी बात करा तो देखो अब की बरसात तो भी कम और कम बरसात रे मायने देखा जद बिर का कम भी तो अपने जी की फसल है वे भी कम भी वी उपज री बात करा तो घनी उपज जी की कम भी जट मूंग है जगह बीघे रे मायने 2 कुंटल वेवना चाहिए बट है जगह घना कम विया कटी तो 30 किलो कटी 50 किलो और कटी 100 कुंटल विया। पन यह है कि आप अगली बात जब ध्यान रखा इरे साथे साथे आप दावदन भी पाला वारो भी काम काज करा वारी रुखाड़ी करा हमारी सार संभाल करा तो आपा ने फायदो मिले। और खेती बाड़ी रे मायने यूं है कि जिया आजकल शिकायत आ रहे है किसान भाई रे मारे तो लाइटा घनी जावे है और लाइटों में क्या कहीं पाणत करा कहीं करा तो सरकार घणकरी योजना में चलावे इन मायने जब बात करा सौर ऊर्जा री तो सौर ऊर्जा कहीं है अपन घण करा फायदा फायदा यह है कि लाइट में निर्भर नहीं रहना पड़े भाई बिजली आई कि नहीं आई आप तो सीधो ही ग्रिड लगा लियो और भी जुगो खेत में चाहे पाणत री बात है चाहे उजाड़े री बात है चाहे ग्रीन हाउस लगावा बीर मायने जो वातावरण तापमान सही राखण बीर बात है तो हैंग है जगो बराबर रहे। और सरकार है जी इंग मायने घन करो भाई छूट भी देवे है बिंग मान जे आप 1.5 लाख 2 लाख लगावा तब 1 लाख रुपया तो यहाँ पर माफ भी कर देवे तो एड़ो आप काम करा खेती बाड़ी रे मायने आपने बिजली माते कम निर्भर रह जे सौर ऊर्जा लगाया था अपने घणो फायदो मिले। देखो बात तो और चालती रहे पर आज वार है बुधवार और बुधवार रे दिन आपने उड़ीक रहे है फोन इन कार्यक्रम री आप रे कोई भी जकी समस्या आ रही है खेती बाड़ी में संबंधित भी रे समाधान री। और आज को विषय खास है वो है रबी फसला री बुआ पहली खेत की तैयारी और खेत की तैयारी क्या काय करा आप जे माटी की जांच करवानी है पानी की जांच करवानी है या अपने खाद उर्वरक कितो काय देनो है या अपने वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट खाद बनानो है तो क्या बनानो ए हगली चीजा ए हगली बातें जकी है विंड्र वास्ते आज चौपाल माते नोत्या डॉक्टर शिव सिंह मीणा आप सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय नागौर। तो हैंग पहले तो करा डॉक्टर साहब रो स्वागत राम राम साहब।
2: सभी किसान भाई जो खेती बाड़ी सुन रहे हैं उन सभी को मेरा राम राम।
1: मीणा साहब पहलो इज सवाल रबी फसलारी बुआई पहली खेत की तैयारी में काई काई शामिल है क्या तैयारी करें।
2: देखो अभी जैसे अभी ये फसल की कटाई हो रही है इसके बाद हम जैसे रबी की फसलें लेंगे तो उससे पहले हमें हमारी मिट्टी की जांच सबसे पहले हमें जांच करानी
1: एक पहलो ही पॉइंट भाई माटी की जांच करवा
2: तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और वो कमी है तो कितनी कमी है कितना हमें खाद देना है कितना उर्वरक देना है तो उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और मिट्टी की जांच 3 साल में एक बार अवश्य ही करवानी चाहिए ताकि हमारी हम जब हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है लेकिन किसान भाइयों को पता नहीं होता है तो वो क्या है कि ज्यादा उर्वरक दे देते हैं तो उससे क्या खेत की स्वास्थ्य पर भी मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव
1: भाई पड़ते हैं। पहली मोटी बात है माटी की जांच करवानी चाहिए। भैया देखो चौपाल सु आप जुड़ो इनके वास्ते आपने फोन नंबर बता दू 015-82-240-168 माता आप फोन लगा माटी पानी री जांच किया कह करा खाद बीज तो मीणा साहब पधारे है वह आप बंतल कर सको समस्या रो समाधान पा सको। तो मीणा साहब एक तो होगी माटी की जांच दूजी बात
2: उसके बाद हमें पानी की भी जांच जरूर करानी चाहिए।
1: अच्छा पानी की जांच
2: जैसे हम यहाँ देखते हैं तो कहीं 4000 TDS तक आता है कहीं 6000 TDS तक यहाँ आता है तो वो खेती के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है तो इसलिए क्या है कि हमें जांच करानी चाहिए। किसान भाई लगता है कि पीने में वो मीठा लग रहा है हल्का तो उसको भी वो खेती में लगातार यूज करते हैं तो उससे धीरे धीरे क्या है 4-5 साल के अंदर वो पैदावार में कमी आएगी और आने वाले समय में वो पैदावार बिल्कुल ही खत्म हो सकती है मिट्टी पूरी तरह बंजर भी हो सकती है।
1: तो दूसरी खास बात है भी पानी की जाँच करवानी चाहिए।
2: तो पानी की जाँच कराने से पता चलेगा कि उसके अंदर खेती में काम में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं और यह किसान भाई के पास कोई डिग्गी बना रखी है या वाटर स्टोरेज के उन्होंने बना रखे हैं तो उसको दोनों पानी को वो मिक्स करके दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर टीडीएस 2-2 हज़ार के आसपास है, तो थोड़ा वो मीठा पानी मिला के दोनों को मिक्स करके भी अगर खेती में करेगा तो उसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। चलो
1: ई माते भी आप थोड़ी लंबी बात करा, तीजी बात अब है आप बताए भी खाद उर्वरक।
2: मिट्टी और की जांच के बाद ही पता चलेगा, और उसके बाद जैसे आप किसान भाई बताएंगे कि ये हमें ये फसल लेनी है तो उसके बाद रिकमेंडेशन देते हैं कि ये अगर आप जैसे जीरा फसल ले रहे हो तो इसके अंदर आपको यूरिया इतना डालना है, डीएपी और पोटाश कितना डालना है, गोबर की खाद आपको कितनी डालनी है, तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन देते हैं, वो रिकमेंडेशन मिट्टी की जाँच के आधार पर ही देते हैं।
1: अगली चीज आ गई, तो हेंगो पहले तो बात आपा करा माटी की जांच। माटी की जांच करावे इन वास्ते पहले तो अपन नमूनो लेवनो पड़े।
2: हाँ, तो नमूना लेने के लिए किसान भाइयों को जैसे फसल कटाई हो जाएगी तो जो अभी वाली जो फसल है उनके अवशेषों को हमें पूरी तरह से हटा देंगे।
1: ठीक है।
2: उसके बाद जो कंकड़ पत्थर है तो इस तरह की उनको भी हम हटा देंगे वहां से, और कहीं गड्ढा है वहां से नमूना नहीं लेंगे, जहां मिट्टी उठी हुई है वहां से भी हम नमूना नहीं लेंगे, क्योंकि उठी हुई मिट्टी है वहां के पोषक तत्व बहकर के निचली जगह पे
1: नीचे जाता
2: है, और नीचे वाली जो जगह है वहां पे पोषक तत्व थोड़े ज्यादा आएंगे तो उसे रिकमेंडेशन में असुविधा होगी। तो इसके लिए कम से 1 हेक्टेयर अगर एरिया है तो किसान भाई को 8 से 10 सैंपल 1 हेक्टेयर एरिया से अवश्य लेने चाहिए।
1: मतलब आप कहने चाहो समतल भूमि है, जमीन एकदम बराबर है।
2: हाँ, वहां से हम लेंगे, कहीं छाया पेड़ पौधा लगा रखा है तो वहाँ की छाया, केदरी लगा रखे तो वहाँ के आसपास से हम नहीं लेंगे।
1: हाँ।
2: तो 1 हेक्टेयर अगर एरिया की बात करें तो कम से कम हमें 8 से 10 सैंपल हमें लेने होंगे।
1: ठीक है।
2: और वो 8 से 10 सैंपल ऐसे है कि पूरे खेत में से लेने, ऐसा नहीं कि एक ही कोने से ले लिया, आधे खेत से ले लिया, पूरे खेत से हम 1 हेक्टेयर एरिया है तो उसके 8 से 10 हम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद में हम फिर उसको छाया में सुखाएंगे।
1: जी हाँ, सैंपल लेवा तो हाँ, माटी है जी की कितनी कहीं हाँ, भाई 7-8 जगह लेवा जन 4-5 किलो लगभग
2: नहीं
1: माटी।
2: हाँ, जैसे 4-5 किलो के आसपास हो जाएगी। उसको फिर हम क्या करेंगे, फैला देंगे और एक्स आकार का कट लगाएंगे, तो उसमें हम आमने सामने की हम मिट्टी को लेंगे।
1: अच्छा, 4 भागा
2: हाँ, 4 भागा बांटेंगे, आमने और सामने वाला जो भाग है उसको लेंगे, बाकी को हटा देंगे।
1: ठीक है।
2: फिर से हम मिक्स करेंगे और आमने सामने वाले को लेंगे, बाकी को हटा देंगे।
1: ठीक है।
2: इस तरह हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे 1/2 किलो के आसपास हमारे पास मिट्टी नहीं आए।
1: भाई माटी की जांच वास्ते 1/2 किलो है जी की माटी जरूरी।
2: हाँ, 1/2 किलो मिट्टी लेंगे, उसके बाद हम उसके जैसे उसमें कंकड़ पत्थर अगर आ गए हैं तो उसको निकाल देंगे, किसी फसल की अगर जड़ आ गई है तो उसको भी निकाल देंगे, दूसरी फसलों के अवशेष है तो वो भी हम उसमें निकाल देंगे।
1: ठीक है।
2: उसके बाद उसको हम छाया में सुखा करके फिर उसके बाद में हम ऐसी पॉलिथीन में पैक करेंगे जिसके अंदर जैसे खाद या बीज में काम में नहीं ली हुई, बिल्कुल
1: एकदम नई,
2: हाँ मतलब खाद की इकट्ठा नहीं होना चाहिए, या इस तरह की पॉलिथीन नहीं हो जिसमें खाद का या कोई दूसरा बीज भरा हुआ, तो उसमें भी कुछ पोषक तत्व आ सकते हैं तो उससे उसके रिकमेंडेशन में थोड़ा दिक्कत आती है।
1: हाँ, आप बताइए मीणा साहब, मैं एक बात पूछूं कि माटी ने सुखा होनी चाहिए कितने टाइम तक आप बिन सुखावा?
2: हाँ, जैसे छाया में सुखाएंगे 2-3 दिन में सूख जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा, बिल्कुल पानी में अगर हल्की सी अगर मॉइस्चर भी है तो लेप में सुखा लिया जाता है, ज्यादा पानी भरा हुआ नहीं हो उसमें, जैसे बहुत ज्यादा गीली हो तो वैसी मिट्टी का एनालिसिस नहीं कर सकते, लेप में परीक्षण नहीं कर पाते, तो उसको वहां जाके भी सुखाना पड़ेगा, इसलिए फार्मर अगर पहले से ही सुखा के अगर भेजेंगे तो थोड़ा सैंपल जल्दी होगा,
1: सुविधा रहेगा। तो फिर बाद में एक जिया थैली में भर ली तो थैली ऊपरे कोई टैग लगा,
2: उसके बाद किसान भाई को ये भी बताना होगा कि उसने पहले के 1-2 साल में कौन कौन सी फसलें ली है।
1: ठीक है।
2: तो क्या कि जैसे कुछ फसलें ऐसी होती है जैसे ज्वार ले रहे हैं या कपास ले रहे हैं तो ये फसलें पोषक तत्वों का ज्यादा अवशोषण करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्व कम आएंगे, तो उसके बाद में ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पोषक तत्व बहुत कम है, जबकि होते हैं थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो जुताई में ऊपर आ जाते हैं,
1: गहरी जुताई करना
2: है तो इसमें पहले की कौन सी फसल ली है और आगे वो कौन कौन सी फसलें लेना चाहते हैं, तो उन फसलों के आधार पे उनमें कि कितना आपको, जैसे जीरे की बात करें तो जैसे इस एरिया के अंदर जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 120-130 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक आता है जो बहुत कम है, तो 280 से 560 के अगर बीच है तो उसे हम मध्यम कहेंगे, लेकिन यहाँ 280 से तो बहुत कम है, ये 120 के 90 भी आता है।
1: इन मैंने मीणा साहब में एक बात पूछू, जी थैली में आप बता दियो फसलों को तो लिख दियो या आप हम बता दियो मान लो प्रयोगशाला में जाए, पर इनमें खेतरो नाम या कसरा वगैरह
2: ये तो किसान का तो पूरा जैसे कि उसका नाम है, उसका कसरा नंबर है, तो उसका खेत का जो भी नाम रख रखा उन्होंने तो अलग अलग है कि कसरे में अलग 2-3 खेत हो सकते हैं, अगर वो हाँ तो वो भी सब उसके अंदर बताना होगा, गाँव का, तहसील का नाम, जो भी पिन कोड नंबर ये सारे, तो उसके अंदर पूरा बायोडाटा भी फार्मर का होना चाहिए और फसल का भी होना चाहिए, दोनों चीजें उसमें।
1: चलो पूरो जी बेड़ो कर बीमा लेकर अब भाई जो को ले जा वकेट जांच करवाने,
2: तो उसके लिए जैसे हमारे कृषि महाविद्यालय नागौर में भी हम करते हैं, जैसे अभी तो हम नहीं कर रहे लेकिन अब जैसे एक दो महीने बाद हम स्टार्ट करेंगे
1: एक मानासर जो की प्रयोगशाला है
2: कृषि विज्ञान केंद्र अठियासन में, वहाँ पे भी इसके
1: बटे भी।
2: अच्छा। और उसके लिए जो हमेशा ही किया जाता है यहाँ पे मानासर में सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो वहाँ पे भी करा सकते हैं।
1: अच्छा बात आवे पैसा री, क्यों देखो घरों निकलते ही पैसा लागना शुरू है, तो किसान भाई दिमाग रे मायने अपना कांटा कितने पैसा लागी बट आप माटी की जांच करावा, तो इरी फीस वगैरह कितनी?
2: जैसे गवर्नमेंट की है जैसे मानासर में सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, यहाँ पे फार्मर से 5 रुपए लिए जाते हैं, बाकी 295 रुपए गवर्नमेंट खुद सब्सिडी के तौर पे देती है, फार्मर से नहीं लेती।
1: अच्छा,
2: उसमें जो खर्चा आ रहा है वो गवर्नमेंट पे करती है, बाकी जैसे हमारी जो विश्वविद्यालय के अंदर इसकी रेट है 70 रुपए, जैसे अठियासन पे कराओगे या कृषि महाविद्यालय नागौर में कराओगे तो वो 70 रुपए लेते हैं, तो उसके अंदर हम 6 पैरामीटर जो होते हैं वो करते हैं, जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास करते हैं, ईसी पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन, ये 6 हम उसमें करते हैं।
1: अच्छा अगली चीज आए जांच
2: अगली तो नहीं होगी उसमें, जैसे ये जो
1: ज्यादातर
2: जो मेन जो जरूरत होती वो आ जाती है इसके अंदर, बाकी जैसे उसके अलावा जैसे यहाँ पे जिंक की भी काफी कमी है जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, इन सभी पोषक तत्वों की भी यहाँ कमी है, तो
1: जांच कौन है?
2: इसकी जांच भी यहाँ हमारे यहाँ तो सुविधा ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मानासर में, तो यहाँ इनकी सुविधाएं हैं।
1: तो जी हाँ, आज मान लो कोई किसान भाई है जो को सैंपल या नमूनों दिया दी हो, तो कितना दिन पचे वीरी रिपोर्ट है जिगी आ जाए?
2: अगर जैसे अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा सैंपल एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी 8 से 10 दिन के अंदर सोइल टेस्टिंग हो जाती है।
1: एक हफ्ता लगेगा?
2: हाँ, एक हफ्ता तो लगेगा।
1: तो अब जी हाँ 7-8 दिनों रिपोर्ट आएगी, तो पच्चे किसान भाई ने ध्यान पड़ जाएगा भी मारा खेतरे मायने की फसल बावने चीजे की है जगह भाई पोषक तत्व कमी है। आई बात
2: किसान भाई पहले ही जो फसलों के नाम बताते हैं कि हमें ये फसलें लेनी है, तो उसी के हिसाब से वो तैयार करके बेचते हैं कि भाई अगर आप जीरा, वो कहेगा कि मुझे जीरा लेना है या मेथी लेनी है, तो उसी के हिसाब से वो बताएंगे कि ये जीरा लेंगे तो आपको गोबर की खाद कितनी डालनी है और दूसरे पोषक तत्व आपको कितने कितने मात्रा में डालने हैं। ये किसान भाई से पहले से ही मांग लिया जाता है कि आपको कौन सी फसल लेने की इच्छुक हो।
1: भाई ध्यान पड़ जाए भाईया ने कि मारो खेत है जो को किसी फसल बाओ और केड़ो कितो खाद ना पहुंचना जो को फसल अच्छी रहे।
2: किसान भाई को क्या कि पता नहीं होता है, तो ये जरूर पहले जांच करा लेंगे तो उनको पता रहेगा। जैसे कि एक नत्रजन की बात करें तो उससे पुरानी पत्तियां पीली पड़ती है, तो किसान भाई अगर जांच कराएंगे तो उनको पता रहेगा कि हमारी मिट्टी में नत्रजन की मात्रा कितनी है। जैसे अभी सर्दी का समय आएगा तो एक समस्या आती है, जैसे कोई सौंफ लगा रहे हैं या तो उनमें पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही, तो किसान भाई को इतना आइडिया होता है कि ये पुरानी पड़ रही है, मतलब नत्रजन या नाइट्रोजन की कमी है। तो वो क्या करते हैं, यूरिया डाल देंगे, उसके बाद में भी वो सही नहीं होगा
1: भाई, कमी तो नाइट्रोजन नत्रजन की,
2: नत्रजन नाइट्रोजन कमी है, लेकिन क्या सर्दी में एक समस्या आती है, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं दो, जैसे नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, तो उनको वो जब भी काम करते हैं जब मिट्टी का 25 से 30 कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब ये इसको कन्वर्ट करते हैं, उपलब्ध फॉर्म में बनाते हैं। तो ये सर्दी के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो यूरिया डालेंगे तो वो उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, उसी रूप में पड़ा रहेगा और चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव काम नहीं कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, तो पौधे को मिलेगा जैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट होना चाहिए, तो नाइट्रेट को पौधा लेता है तो अमोनियम की फॉर्म में ही पड़ा रहेगा, उस अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट नाइट्रोसोमनास नाइट्रोबैक्टर करते हैं, तो इस स्थिति में किसान भाई क्या फिर से डाल देते हैं, लेकिन उसका डालने से कोई भी प्रभाव नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, क्योंकि हमने जो नाइट्रोजन डाली हुई है वो खेत में सुरक्षित है, तो जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी।
1: मतलब आई कहने चाहो आप कि जी माटी की जांच करवा वाले तो अपन ने ठा पड़ जाए,
2: हमारे में भरपूर है तो नहीं था भरपूर, तो हमने पहले जांच से पता चल गया था कि हमें 50 किलो या 60 किलो देना था, उतनी हमने दे दिए, अब बार बार नहीं डालनी है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिक फसल अपनी ठीक हो जाएगी।
1: अब मीणा साहब आप बात पहली बताई भी माटी की जांच अपन ने 3 सालों करवा लेनी चाहिए, बात है जी कई भाई खाद ना के खेतान मायने 3-3 सालों फेर पाचो ना के।
2: जो देखो अभी मैंने 2 सूक्ष्म जीवों की बात बताई, तो ये जितने भी हमारे पोषक तत्व है उनको कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में हम देते हैं तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले ये दो सूक्ष्म जीव, इसी तरह दूसरे पोषक तत्व है उनको भी चेंज करने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो हम कितना भी खाद डाल ले वो चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होगी तो हमारे पौधा कैसे लेगा। तो इसीलिए और उनका खाना है गोबर की खाद।
1: ठीक है,
2: तो गोबर की क्या है कि 3 साल में लगभग जो भी हम गोबर डालते हैं वो सड़ जाता है, तो उनके लिए खाना कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि हर 3 साल में आप गोबर खाद जरूरी डालनी है, ये पोषक तत्वों का उसके सूक्ष्म जीवों का खाना है और यही सूक्ष्म जीव उनको चेंज करते हैं। तो इसीलिए और फिर क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो कोई मिनरल से नहीं मिलती, दूसरे पोषक तत्व जैसे मिनरल से मिलते हैं, जैसे फास्फोरस एक जमीन में मिनरल्स होते हैं, एपेटाइट उससे मिल रहा है, बोरोन टर्मेलाइन से मिलता है। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है इसका जो सोर्स है एटमोस्फियर में, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है यही है।
1: ठीक है,
2: तो इसके मिट्टी में इसका कोई सोर्स नहीं है, मिट्टी में इसका सोर्स है गोबर की खाद या कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है। तो ये आपको हर 3 साल में एक बार डालना पड़ेगा। अब जैसे हमने गोबर की खाद डाली उसमें अगर 100 किलो नाइट्रोजन है तो पहले साल 33% मिलेगी, अगले साल भी 33.33 मिलेगी, अगले साल तीसरे साल 33 मिल जाएगी। तो इस तरह से 3 साल में जितनी भी नाइट्रोजन मिलनी होगी वो मिल जाए और गोबर की खाद भी पूरी तरह से सड़ जाएगा। तो इसलिए हर 3 साल में एक बार गोबर की खाद डालेंगे तो नाइट्रोजन भी प्रॉपर मिलेगी और सूक्ष्म जीवों को खाना भी प्रॉपर मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब देखो आप बताए की गोबर की खाद भाई कहीं करे जी, हाँ भैंसिया है चाहे गाय है चाहे लड़िया बकरिया है, बनी खाद दे की सीधी दड़ा मातू ले खेतर मार नाक देवे के मारो उपज कम भी या कटे कटे घणो जाडो होगो कणे कटे कटे पानी घणो मांगे तो फसल बल भी जावे, तो इरी विधि है कहीं की खाद ने अच्छी तरह बनाऊं।
2: जैसे किसान भाई आपने सही कहा कि किसान भाई जो अधिकतर जो किसान भाई है वो क्या करते हैं कि कहीं ढेर कर देते हैं। ढेर करने से जैसे अपन पब्लिक टॉयलेट पे कहीं जाते हैं तो एक स्मेल सी आती है, या कोई गोबर डाला हुआ है या जानवर बंधे हुए वहाँ एक स्मेल सी आती है, तो वो स्मेल अमोनिया की है, मतलब नाइट्रोजन तो उड़ गया हमारा, तो नाइट्रोजन उड़ता है उसकी स्मेल हमारी आती है। तो हम मेनली जो हम गोबर की खाद डाल रहे हैं नत्रजन के लिए डालते हैं तो वो हमारी उड़ जाती है, तो किसान भाइयों को ये पता नहीं होता, इसलिए इसको हमें सुरक्षित रखना होगा। जैसे 5-6 महीने में गोबर की खाद तैयार करने के लिए गड्ढे में डालेंगे, गड्ढे में डालने के बाद जैसे फसलों के अवशेष है वो ऊपर डाल देंगे या मिट्टी है तो थोड़ा बहुत मिट्टी से डाल देंगे, और फिर उसमें पानी भी बराबर रखेंगे, मतलब गीला रखेंगे, ऐसा सूखा रखेंगे तो प्रॉपर उसका सूक्ष्म जीव उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं।
1: जी हाँ मीणा साहब, भाई जो 2-4 कुंडा 5 कुंडा जी नाग दियो बी के बाद में जगह बन आप चारो नीरा चारा का जगह अवशेष रहे
2: वो उसके ऊपर डाल देंगे तो हमारे जो नत्रजन है या सल्फर जो है या क्लोराइड है ये उसके उड़ेगी नहीं, वो गैस बन के उड़ती है वो नहीं उड़ेगी, वो उसके अंदर ही रहेगी।
1: और बाद में पानी भी
2: पानी भी डालेंगे तो सूक्ष्म जीव उसको अच्छे से जल्दी से सड़ाएंगे। पानी भी इसमें रखेंगे, पानी किसान भाई डालते नहीं ऊपर रखते हैं तो पानी कैसे डालेगा, पानी डालेंगे तो जमीन में बहके चला जाएगा, तो गड्ढा खोद करके हम उसमें डालें और पानी भी बराबर रखेंगे तो 5-6 महीने में अच्छी सड़ करके गोबर खाद तैयार है। सड़ी हुई गोबर की खाद हम उसे कहेंगे जो हमें भुरभुरी दिखे, वो ऐसा पता नहीं चले कि ये गाय का गोबर से आया या भैंस के गोबर से या फसलों के अवशेष से, सारा मिक्स होकर के एक भूरा भूरा रंग का दिखाई दे तो उसे हम सड़ी हुई गोबर की खाद कहेंगे,
1: कंपोस्ट जकान के वहां। तो उसे एक वर्मी कंपोस्ट है अलसिया जकान के केंचुओं बनावे जकी।
2: वर्मी कंपोस्ट में अच्छा जैसे 1.5% के आसपास नाइट्रोजन होता है, क्योंकि किसान भाई जैसे पता है कि वो अच्छे छाया में बनाएंगे, उसमें प्रॉपर पानी भी हम रखते हैं, उसमें नाइट्रोजन का जो लॉस होता है वो होता नहीं है, वो रुक जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे एक केचवा आता है तो कहीं पे भी जो आसपास हो, जैसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में भी ये मिल जाएगा, आईसीनिया पोइटिडा के नाम से आता है, तो गोबर क्या करेंगे हम, जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, जो जैसे एक वो उसके ट्रेंच आती है या आप सीमेंट से भी बना सकते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम गोबर डालेंगे, गोबर ताजा नहीं होना चाहिए।
1: आप कहना मतलब आप क्या रहे बनाओ तो पक्की भी बना सके,
2: पक्की भी बना सकते,
1: किता भाई किता की बना भाई
2: वो जैसे 1 मीटर चौड़ी रखेंगे और लंबाई किसान भाई अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकता है। तो उसके अंदर फिर क्या करेंगे, जैसे वो गोबर किसान भाई के ताजा यूज कर लेते हैं, ताजा करने से क्या उसमें बहुत गर्माहट हो जाती है तो केंचुए मर भी सकते हैं और वो काम नहीं करते,
1: एक बार ठंडो करो
2: तो 2-3 दिन का ठंडा गोबर हो तो उसको हम उसमें डालेंगे, फिर उसके अंदर बोरी के टाट डाल देंगे ताकि जो दूसरे पक्षी है वो केंचुओं को नहीं खाए, कभी कभी केंचुए ऊपर आ जाते हैं तो ये खा जाते हैं,
1: ढकना जरूरी।
2: हाँ, फिर उसके अंदर जो ढकने से क्या होगा कि मॉइस्चर भी उसके अंदर मेंटेन रहेगा,
1: नमी
2: भी पानी उड़ेगा नहीं, तो वो भी एक फायदा है इस तरह से।
1: तो केंचुआ मायने जो बीरमाइन छोड़ दा, तो एक जी आप बताइए 1 मीटर के या लंबी 3 मीटर तो बीमाइन कितना का केंचुआ छोड़ा बाबी, कोई संख्या है या अंदाजन?
2: हाँ, जैसे अब जैसे 1 मीटर हमारा चौड़ा है,
1: ठीक है,
2: और जैसे 5 से 6 मीटर अगर है, अब 8 से 10 किलो आप डालोगे केचुए, तो उसके अंदर केचुए में क्या होता है कि पूरे के पूरे केचुए भी नहीं होते, उसके अंदर थोड़ा गोबर भी होता है,
1: क्योंकि
2: तो भी अकेले केचुए भी अगर हम कहीं से लाएंगे 2-3 दिन तो उनको खाने का कुछ मिलेगा नहीं, तो मर जाते हैं,
1: तो वो जरूरी है।
2: हाँ, तो दोनों थोड़ा मिक्स होता है, तो 8 से 10 किलो हम डालेंगे उसमें।
1: भैया देखो, आज जो कार्यक्रम आप वास्ते चल रही है सजीव फोन इन कार्यक्रम, आज शिव सिंह जी मीणा पधारियोड़ा है, रबी फसलों की बुआई री पहली तैयारी जकी करनी है खेता की, आपने कोई भी समस्या आ रही है या कोई सवाल बूझना है तो चौपाल माते आप फोन लगा सको हो 015-82-240-168 माते फोन लगा, आप क्या कहीं तैयारी करो जो गोबर है कंपोस्ट है वगैरह सगली चीजा आप जगह मीणा साहब ने पूछ सको। मीणा साहब आप बताइए, चलो अलसिया जी छोड़ दिया, अब कितना दिनों आ वर्मी कंपोस्ट अपन तैयार?
2: सभी चीजें पानी भी अगर प्रॉपर रखेंगे, ज्यादा जैसे ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, जैसे गर्मी के महीने में केंचुए काम कम करते हैं, तो अगर अच्छा टेम्परेचर अगर मेंटेन हम रखते हैं तो 2 महीने में
1: गोबर तो अपन मान लो कोई छप्पर अपर
2: छाया भी हम बनाएंगे ताकि ज्यादा सर्दी में भी काम नहीं करेंगे, ज्यादा गर्मी में भी ये काम नहीं करते हैं, जैसे बरसात के दिनों में अच्छे काम करते हैं, तो ऐसी अच्छी कंडीशन है तो 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है।
1: अच्छा, 2 महीना में तैयार हो जाए।
2: हाँ।
1: तो अब सीधो आप भी काम लेवा या इनो भी छान या अलग
2: करता है? इसके बाद में हम के जैसे जैसे हमें वो 2 महीने हो गए हैं और हमारे वो भुरभुरी दिखने लगी है, तो उसके बाद में हम पानी देना बंद कर देंगे ताकि केचुए जो हमारे नीचे रह जाएंगे,
1: नीचे पिंदा में जाता रहे।
2: अगर पानी छोड़ दिए इनको गीला पसंद रहे, ज्यादा नमी की ओर ये मुंह करते हैं, नमी नीचे रहेगी तो नमी नीचे चले जाएंगे,
1: ठीक है,
2: तो फिर ऊपर ऊपर से हम इसको हटा लेंगे, हटाने के बाद इसको छान लेंगे, अगर कुछ केंचुए अगर उसमें आ गए हैं तो वो भी उसमें
1: अलग अलग पा जाएंगे। हाँ।
2: तो वो एक दानेदार एक भी अगर बन बनेगी, कहीं कहीं खट्टी हो रखी है तो दानेदार बन करके हम छानने से
1: मतलब भुरभुरी होनी चाहिए,
2: भुरभुरी होनी चाहिए, तो उसके बाद हमें क्या की जैसे खेत में डालने के लिए भी आसानी रहेगी, जैसे उसको छिड़क के डाल रहे हैं तो उसलिए भी उसको छानना आवश्यक है।
1: तो जी बात करें आप 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितनी कहीं खाद ना का ताकि उपज बढ़िया हुए?
2: हाँ, जैसे हमें 8 से 10 टन आपको ये डालनी होगी 3 साल के अंदर, तो ये रहेगा, जैसे गोबर की डाल रहे हो तो आपको 15 से 20 टन डालनी, तो लगभग उसकी आधी हमें ये डालनी है। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी फसलें बो रहे हो, जैसे सब्जियां की बोएंगे तो सब्जियों के अंदर आपको 10 से 15 टन आपको डालनी होगी,
1: सब्जियों में ज्यादा चाहिए,
2: सब्जियों में ज्यादा चाहिए और दूसरी जो फसलें हैं उनमें कम चाहिए होती है।
1: सावधानी काई रखनी पड़े जिन टाइम आप खाद भी बनावा भी टाइम, कोई तो सावधानी रखा जखाण सो आपने खाद भी अच्छी बने और नुकसान भी कोई नहीं,
2: कहीं डायरेक्ट उसके अंदर धूप नहीं आनी चाहिए,
1: ठीक है,
2: एक तो दूसरी बार हम छाया का भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे और जो इसके अंदर मॉइस्चर का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, नमी का भी ध्यान रखेंगे, 4-5 दिन में हम उसमें पानी हल्का हल्का स्प्रिंकलर से या झारे से हम देते रहेंगे एक जब, और ज्यादा पानी नहीं देंगे, ज्यादा पानी देने से क्या होता है कि वो जो पोषक तत्व बह करके नीचे चले जाते हैं, तो ज्यादा भी हम पानी नहीं डालेंगे, हल्की नमी बनी रहे और उसको ढक के रखेंगे ताकि ये जो पक्षी है वो केंचों को नहीं खाएं,
1: ढक के रखने
2: से और नमी भी अपनी बनी रहेगी और पक्षी भी इसको नहीं खाएंगे, ये सब सावधानी है इसमें रखनी होती है।
1: चलो मीणा साहब, आप बात तो आप बता दी माटी की जांच या खाद किया कहीं बनाना, अब बात आवे पानी, अपनो जो को एरियो है नागौर इरे मायने पहली तो चोको पानी वे तो आजकल पानी 600, 700, 800 फीट पर गियो ब्रो, तो इके मायने कई जगह फ्लोराइड की मात्रा गणी है और पीएच मान जो को कदम वो सही नहीं है, तो इरे भी जकी जांच है वे भाई करवा तो ठीक रहे?
2: ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी क्या देखते हैं किसान भाई कहते हैं कि हमारे तो खारा पानी है।
1: देखो सर, एक भाई लैंड सुन जुड़िया है घणीदारू करा मंत्र, राम राम सा।
3: राम राम सा,
1: शुभ नाम आप रो?
3: जी मारो नाम राकेश नेगवाल है।
1: हाँ राकेश जी, कीजिए क्यों बोलो सर?
3: मैं डेगाणा बोलो सर।
1: काहे सवाल है आप रो?
3: सर माने चना बीजना है।
1: चना बीज
3: वास्ते चना वास्ते बारे में बताओ ना,
1: खेती की तैयारी क्या करनी है?
3: हाँ
1: हाँ, चना बीज तो आप कने पानी रो साधन है?
3: नहीं पानी तो बचा दू है,
1: बरसात तो अब की कम भी नहीं राकेश जी,
3: कम हुई लेकिन अब की बार अब हालतों और हो जाए उम्मीद है।
2: हाँ, अगर बरसात अगर जैसे बुआई के समय में अभी अक्टूबर का महीना है तो उसके लिए सुटेबल है, तो आप कोई सी भी जो वैरायटी है प्राइवेट जैसे सम्राट इसकी वैरायटी अच्छी है तो वो भी काम ले सकते, और बहुत सारी प्राइवेट वैरायटी जो किसान भाइयों को पता हुआ या कि अच्छी परफॉर्म कर रही इस एरिया में तो वो भी आप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको जैसे 70 से 80 kg अगर आप प्रॉपर अगर पानी है तो, अगर पानी थोड़ा कम बारिश हुई है तो क्या है कि जर्मिनेशन कम होता है, तो आपको 100 kg तक आपको इसकी सीड रेट लेनी होगी, उसके बाद में जैसे आपको ये 40 kg आपको नत्रजन लेना है, ये यूरिया से दे सकते हैं वो, और 30 से 40 kg अपन को DAP से फास्फोरस देना है, और 20 से 30 kg आपको पोटास डालना है, और आपके पास गोबर की खाद की भी अगर सड़ी हुई सुविधा है तो वो भी आप 10 से 15 टन डालोगे तो आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार इसमें अच्छे से सीड, मतलब ये ज़्यादा फाइन नहीं होनी चाहिए मिट्टी के पार्टिकल जो है, ढेले भी हल्के फुल्के हैं तो चलेगा, एक बार आप जुताई करके उसमें डाल सकते हो।
1: ठीक है सर?
3: जी जी
1: ठीक सर, धन्यवाद। आप बताओ तक पानी की जांच, अब बाकी यहाँ कहीं करे बीरो नमूनो ले उन तरीकों।
2: पानी जैसे हम लेंगे तो क्या होता है कि जो नमक है या साल्ट है नीचे जमीन या इसमें ट्यूबेल
1: में
2: या कहीं से भी वो जो स्टोरेज कर रखा है वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें से अपन को ट्यूबेल से लेने के लिए क्या करेंगे, 15-20 मिनट हम पहले पानी को चलाएंगे, तो उसके बाद में हम, और ऐसा भी नहीं कि लास्ट में हम ले रहे हैं जब लास्ट पानी खत्म होने वाला उस समय, उसके बीच में
1: लेना,
2: और या फिर अगर हम कर रहे हैं तो जैसे स्टार्टिंग जब चला रहे हैं तब भी नमूना ले लो, बीच में चला रहे हैं तब से भी ले लो, और लास्ट में जो चला रहे हैं उसका भी ले लो।
1: ठीक है,
2: तीनों को आप मिक्स करके भी आप ले सकते हो।
1: कितो का पानी आप एक बोतल में लीटर?
2: हाँ, जैसे हमारे तो 100 ml में काम हो जाता है।
1: ठीक है,
2: लेकिन अगर आधा ml या आधा लीटर या 1 liter भी किसान भाई लाता है तो अच्छी बात है, और वो लेने से उसमें क्या है कि जो भी हम बोतल यूज कर रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे उस नमक साल्ट उसमें जमे हुए हैं दूसरे केमिकल्स है, तो उससे भी उसका TDS या PH ज्यादा या कम आ सकता है।
1: तो इरी भी आई बाई विधि है जी, हम किसान नाम लिख ले कर लेते
2: हैं। हाँ, इसमें भी आपकी जैसे ट्यूबवेल में, इसमें अपने किसान भाई को अपना इसमें कसरा नंबर की आवश्यकता नहीं है, किसान भाई अपना नाम है कौन से एरिया से लेकर के आ रहे हैं और ट्यूबवेल से लाए हैं या कुएं से लाए हैं या जो बारिश का पानी स्टोर किया है वहां से लाए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है, और कौन कौन सी फसलें वो आगे लेना चाहते हैं तो उनके बारे में उसमें लिखना होगा।
1: लिखे आपने देख कितना दिन बाद जाँच आ जाए?
2: इसका तो कोई नहीं है, तो आधे घंटे का काम है।
1: अच्छा, मिल जाए?
2: हाँ, 10-15 मिनट का काम है तो आधे घंटे में रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाती है, सेम डे भी हो सकता है।
1: चलो ठीक है सर, ऐ बात तो भी एक भाई लेन सु जुड़िया है करा मंथल। हाँ, राम राम सा। हेलो हेलो, हाँ लागे है कि लेन है जे की सही कोनी। और देखो भैया, आज शिव सिंह जी मीणा जका पदार यार, आप जे की घनी हकरी जानकारी दे रही रबी फसलां बुवाई पूर खेत की तैयारी किया करे। मीणा साहब आप आज पदार इति जानकारी दी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: तो भैया देखो, बाजार भाव री पांदरी मारते ही फूकती हुई आज नागौर मंडी में नुआ मूंग है जगह 7,850 ले 8,850 तक बिक्या, तो पुराना 6,000 7,800। मोठा ने बोली नागौर मंडी में 6,000 7,000 लागी, तो काला तिल 10,000 11,200, सफेद तिली है जिगी 10,500 11,800 तक बिकी। नागौर मंडी में जवार 3,500 5,000, गंवार 6,064 26, तारा मीरो 5,800 रुपया, औसत 40% जो फेटरो भाव रायडा रही वो 7,900 रुपया प्रति क्विंटल। जीरो नागौर मंडी में 17,521,700, मेथी 5,864, इसबगोल 9,513,800, सौंपरी बोली 8,000 ले 13,000 तक लगी, तो नागौर मंडी में चीना 5,405,650 तक लगी, तो असाड़ियो 5,800 ले 6,100 रुपये प्रति क्विंटल बिक्यो। नागौर मंडी में सिंधी सुगो 6,007,800 रुपया प्रति क्विंटल बिके, तो जे भाव आपने दाए आवे तो आप नागौर मंडी में ले जा रहे, आप अपनी जिंसा बेच सको और दाम कमा सको। आज रे इन कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रियो दुर्गाराम जीरो और प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोल्स, और इनके साथ ही आज री खेती बाड़ी अठे थी धीरो आप विष्णु भाई ने सी करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल।
1: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
1: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा।
2: जी,
1: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
1: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
2: जी,
1: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
1: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी, लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
1: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए।
2: जी।
1: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है।
2: जी।
1: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई।
2: जी।
1: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
2: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
1: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी।
2: जी।
1: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
2: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए।
1: जी।
2: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
1: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था, और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है।
2: जी।
1: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है।
2: जी, एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
1: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
2: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
1: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है, इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है, और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
2: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक।
1: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
2: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
3: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
4: अ जू?
3: यस, अ जू।
4: ओ यस।
3: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
4: टाइगर, लायन,
3: यस,
4: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
3: वेरी नाइस,
4: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
3: ओह वाओ, सो हियर इज अ चाइल्ड लाइक यू हु वांट्स टू गो टू अ जू। नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोएम एंड यू ऑल रिपीट आफ्टर मी। रेडी?
4: रेडी।
3: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
4: We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: And a lion too.
4: And a lion too.
3: We are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: The monkeys swing and climb.
4: The monkeys swing and climb.
3: They know it's feeding time.
4: They know it's feeding time.
3: The polar bear and sea

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहाँ एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो

0: हेलो काका, राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही। आप रो न्याऊ भिजो को के नेर गांव भिजो।
0: नाम मारो शंकरलाल है, गांव मेरा सोनिया सर है।
1: हो हंकर जी, होनिया सर में कोई करो
0: करा काया काका जी, हिजिया थोड़ा।
1: ओ हिजिया आ गई, हिजिया थोड़ो भी रहो। देखो के अब टाइम से ले लो, ये देखो कहीं बाद लिया मंडी जी को डर लागे हो।
0: हाँ मैं तो बरसा काका।
1: हाँ सही कह था। और भी जो गांव में परिवार में हगला किया नहीं हो?
0: और सब रेडी रहते।
1: ए जाने प्रोग्राम क्या लागे?
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा काका।
1: बिंदनी आका करिया कहीं आज हो?
0: बिंदनी धाका कौन करे, आज मड़ाई करे
1: आज। तो थे करता बोला।
0: हाँ मैं तो करा यहाँ।
1: अरे नहीं करना, घर की लक्ष्मी है, उसका मान सम्मान करना चीजता है।
0: हाँ करिया काका।
1: ए काको एक कह बात के मान जो गई।
0: हाँ बिल्कुल है।
1: ए तो दे दा पांच बार बोल दो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़,
0: कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक।
1: भाई की गाड़ी फंस गई है, तुम इधर आओ। बोलो हेलो।
2: हेलो
0: हेलो लोनी भाई, राम राम।
2: राम राम सर, राम राम सर। भाई जी ओ काको तू यहाँ बैठ बैठ यहाँ रे भाई दे।
0: हाँ
2: ए यहाँ करो होरो सो बताई दो।
0: हाँ
2: पकड़ू कान नाक पर बैसू।
0: हाँ
2: बन जाऊं चेहरे की शान, अक्सर मोटा मोटा कर दिखलाऊं, बतलाऊं मेरा नाम।
0: ए भाई अब कौन?
2: ए भगवान जन काका, अब थे थार भाई ने हमारो।
1: ए मैं हमालता हूँ भाई की तरफ जाऊं जाऊं भाई। यो वो तो थारे काके चुश्मू। यो आज भाई को पूछो भोगा में क्या पूछे।
2: आज भाई माला शंकरलाल जी,
0: आज कोई मेरा का भजन सुना दो।
3: अरे राम राम शाह।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही। अबरो न्याओ भिजो को के नेर गांव भिजो।
3: नाव जयदेव सोनी नागौर।
1: ओ जयदेव जी क्या नो?
3: ठीक है बहुत बढ़िया है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे।
1: ए डोगरा क्या नियो गर्मू?
3: गर्मू ठीक ही है, गोडा दुखे साले।
1: अरे गोडा दुखे तो पूछी की हल्दी रमाई हंजनो करिया करो दोन जना।
3: अब हल्दी आज करा
1: करा दे मन लागे गंजू सही करो।
3: नहीं कौन करूं?
1: ऐ पूरी हड्डिया में जिमो दोन जना जिम और कहीं करनी हो बीरा आगे कहीं ले जाओ। हाँ
3: तो कहीं कौन आले हाथ आप बोली चाली आल थान मीठी बोली।
1: अरे वाई सेवा, और भी जो थाने प्रोग्राम के शौक लागे हो?
3: अरे बात थोड़ी तो मीठो लागे तो बढ़िया लागे, सब बढ़िया था राशन बोली लागे था की लोनी भाई री बोली बहुत प्यारी
1: है। ऐ तो बोली प्यारी है जी ने लुणके। ए दादी की थारी बोली प्यारी लागे, तू बात कर ले।
2: हेलो
3: हेलो
2: राम राम साहब, आगे लागू
3: मौत करो लोनी भाई, मौत करो खुद रो।
2: और की तबीयत पानी?
3: मारी ठीक है।
2: अरे तो माला फेरिया करो नी धन था, माला काको कहीं करे।
3: हाँ
2: काको बेगा उठ जावे, तीन बजे जागे तो और चार बजे जागे तो और उठ पर आर बेच जावे।
3: हाँ माला तो फेर।

0: सुसाड़ करे हाप आ गयो कहीं बोले थे हुणो तो करी कीकर फेरे जकी
1: प्रोग्राम जोरदार लगे। एक तो माने दो भतीजा एवडी है मनीषा सरिता।
0: अरे वास माने रामा शर्मा की जो रगलानी थाने कहीं सुनावा
1: मीरा को भजन सुनाए दो
0: काका आयो ए भगत शिरोमणि मीरा बाई को भजन जान दो
2: ए मेरी बेटी खेऊ जाओ मारी बेटी
0: ओए लो।

0: Какая рам рам?
1: Эй, рам рам жай, рам рам жай, я бронял видео, кокенир гау видео.
0: Какая баро рам, Икбал Хан Чиндал, табу Ажмери гейт, кинлог малат болу.
1: Ау, о, Икбал джи, салам алейкум му.
0: Валикум салам.
1: О, кья не дхе?
0: Мэ жор да ра, аж мэр ба не мани кирпа.
1: Там джи ки кирпа, дэ мани яд гиро, мэ дхани яд гиро, ор бадьо дхани богам кейш йог лаге о.
0: Богам то какая ज्ञान लग जाए मिश्री की दया वाली ज्ञान लग जाए।
1: अरे भाई सेवा और घर परिवार में सब ज्ञान है।
0: सर मालिक मेहरबानी है, राजी की कुर्सी है, जोर में है।
1: ए बिनरी आका जो कोनी करे धनी
0: ले छोटा छोटा करे है पर सेन कर ले वहां।
1: आय दो काका लीजिए वो दे दो। ए लूनी भाई हो।
2: हां काका।
1: ए इकबाल भाई का फोन है आज, बोलो। ए लो
2: हेलो।
0: हां राम राम लूनी भाई।
2: राम राम सा पगे लागू सा।
0: हां खुश रहो खुश रहो।
2: और टाबर टोली कहीं करे?
0: मैं जोर में है, मजे में, राजी खुशी है।
2: हां थर केवड़ो करे?
0: हां मार केवड़ो क्यों कौन करे बजे मोटा करे टाबरा ने।
2: हां सी ऐसा हेले आगे हाजिर हुए?
0: हां बिल्कुल बिल्कुल ना हाजिरी देवे।
2: बस एक आडी बताओ जना।
0: हां बोलो।
2: एक थाल मोते हूं भरा।
0: हां
2: सबरे माते ऊंदा धरया।
0: हां
2: चारों ओर वो थाल फिरे पर मोती बिमो एक ना गिरे।
0: ओ रोल भाई ये तो थाला और कोनी आवे।
2: काका आयो।
1: हां भैया।
2: ए थंकला इकबाल भाई ने हमबेलो।
1: ए हम जाऊं तो इकबाल भाई हिंडारे ने डन्ना नी मैं आउता हूं।
0: हां बोलो।
1: ए ओ आकाश होता है आसमान।
0: आकाश।
1: हां आसमान हुए की लुणगे।
2: हां काका।
1: हां जो हम जी
0: हां हुआ है ना।
2: हां आकाश रा तारा हुए बच्चे।
0: हां सही है।
2: ए प्रोग्राम केड़ो लगे आपने?
0: प्रोग्राम जोरदार लगे लुण भाई। खाना ताकी बोली काका की बोली बड़ी तकरी लगे।
2: अरे वाह सा आपरी पसंद ही बढ़िया है।
0: मैं दो संग नाम ले रहा हूं।
2: ले लो सा।
0: रणवीर सिंह।
2: हां
0: डॉक्टर सिंह।
2: अच्छा
0: दिनेश और रोहित।
2: वाह सब ने रमा समा कही जो आज कहीं होने लागले दोस्त था।
0: हां आज होने ला जाज भाई सुना दीजिए जाज भाई।
2: काका आयो।
1: हां भैया
2: इकबाल भाई जी के भेजो जहाज भाई।
1: ए तो जाज भाई ने जों दे तू
2: आई लव।

0: Alô, Kaká Ram Ram.
1: Ei, Ram Ram Jai, Ram Ram Jai, ô Brunhão, vídeo, coque nirgão, vídeo.
0: Meu nome é Ram Ram Surdas.
1: Oh, oh, Surdas ji, gai baje ki, digum, firmo.
0: Arre, rolo.
1: Oh, oh, rolo, Surdas ji, gai, dike, konigi, ham deyo.
0: Ayo, Kaká, kodji, kip se, kai gara, ye, dhuna, kanga.
1: अरे वाजन की दिक्कत नहीं है, रेडियो सुनता रहो, देखो मन की आंखों से देखते हो तुम तो।
0: काका रेडियो में परवेश होना और वचन होना।
1: अरे वाह भाई वाओ, ए भाई हो।
0: हाँ
1: ए रोल में सब किया नहीं हो।
0: रोल में ठीक है काका जी, थोड़ा नाम ले लियो।
1: ए ले लियो शाह।
0: मेरा भाई का नाम गिरधारी। ए भाई का नाम मोटा पप्पू।
1: आओ
0: ए विजय। रामदीन।
1: अजिया।
0: हमारे माँ का नाम सीता।
1: अरे वाह, ए लूनी भाई हो।
2: आइको काका।
1: ए हुरदास जी रो फोन है और तुमसे बात करना चाहता, भाग दे आओ।
2: आओ आओ आएगी काका।
1: ए बोलो। हेलो
2: हेलो
0: हेलो लुणकी राम राम।
2: राम राम सर, राम राम सर, पके लगो।
0: खुश रहो लुणकी, खुश रहो।
2: ए बताओ सब नेड़ो थारे बार कुण हो?
0: ए वारके जो गणी है भाई,
2: सब नेड़ा कुण लागे थारे?
0: नेड़ा में
2: बुणा।
0: हाँ
2: भाई सब नेड़ा तो राम जी लागे।
0: हाँ
2: देखो याद करता है, हाजिर हो जाए की थारे फोड़ो हुए तो या तो आप भेज दे सेवा में।
0: हाँ काकी कहीं करे?
2: अरे काकी रबार लावणी आवड़ी है, मूंग पड़े
0: मनी मूंग पड़े।
2: हाँ सुनो तो।
0: हाँ
2: बिना थके चलती दिन रात।
0: हाँ
2: टिक टिक टिक टिक करती बात।
0: हाँ
2: बंदी हाथ दीवार चढ़ी
0: भाई, ये बात समझ गल बैठे लोन की मैंने तो।
2: काका था बताओ कौन हुए?
1: हम हुरदास जी की तरफ जाऊंगे, वो तो घड़ी होती है।
2: आज कहीं हुनोला
0: बिन जानी एसेंस बोलता है बात आती रेजासी।
2: काका आयो
1: आई बेटा,
2: सूरदास जी के जी भेज दो
1: ए ओ जा मारी बेटी।

0: है मारे भैयाओ तो भयंकी बोयंकी शिव की भजन का प्रोग्राम।
1: हेलो गोरबन,
0: ई प्रोग्राम में कोई भाई गीत भजन होना चाहूँ तो तुम कहीं केमता हो?
1: तो काका इतवार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे ते नागौर आकाशवाणी फोन करना है।
0: ए नंबर क्या है?
1: नंबर है काका 015-82-240-168।
0: अच्छा ओ ए भाई
1: काई को काका?
0: एक ही भैया का फोन है, सुमे की कुम मिले नहीं सीखे तुम्हारे काका को हाका करेंगे पाना बांचो।
1: काका निकिता भाई मकोड़ी हुए, महावीर जी अड़ाई हुए, नेंदू राम जी तरनऊ हुए, फूला राम जी मुकाम हुए, चेरा राम जी रामदेव नगर हुए, जगदीश भाई जिंदा सुखा का।
0: ए तो आए सब ने के अगली इतवार का फोन कर करीजो।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोणी की भूमिका में थी भीकी देवी चौधरी।
0: ओ भाईयो
1: काई को काका?
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो किसका है?
1: जितेंद्र कुमार।
0: आज के प्रोग्राम के पशुदूत कीटा
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंडेश लगो मारे बेटा,
1: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरबन
0: होती हो जब आप रे गो के नेर होगी
1: लून की नया धीरा उसी को करते हैं
0: राम शाही।

अभी आप सुन रहे थे हेलो कोरबन लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज सोनी IR OTT प्लेटफॉर्म वेब्स और अगर आप इंटरनेट के माध्यम से हमें सुनना चाहते हैं तो ऑल इन रेडियो लाइव पर जाइए। इन सारे ही डिजिटल माध्यमों से आप हमें अलग अलग हिस्सों में देश और दुनिया में सुन सकते हैं। इस समय रात्रि के 8:44 हुए हैं। ठीक 8:45 से आप सुनेंगे समाचार संध्या। समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी वैष्णवी
1: मुख्य समाचार भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमेरिकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए

0: पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमेरिकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और

0: हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माय भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवन संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: एमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। किया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
6: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
7: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
6: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तलत अजीज की गाए कुछ गजलें।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे तलत अजीज की गाए कुछ गजलें। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की इस FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 7वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
3: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नए गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहां भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था
4: जी।
3: और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है। लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
2: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
5: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों

0: के पार्टिसिपेशन में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा और लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से थी, और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
3: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ, बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
3: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेकर

0: जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहां से कचरा दिखा या आपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाली जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक चार अनिवार्य कर लिया, दो से नहीं चलेगा, चार करना पड़ेगा, जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचड़ा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है, यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ, वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े के जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है, एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं ऐसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारा शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था, 2016 में और 2017 में नंबर एक पर आ गए। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और

0: आप जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया, तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
2: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं, लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था। कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो सिक्स है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था। करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्लड मैनेज वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है, जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे, और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया, सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना, और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार, जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंभा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है, और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार, और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग रहा है कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए, और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है।
2: क्योंकि एक चीज आप देखिए जी, जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, हाँ। सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, नहीं। सफाई शिक्षा से आता है जी। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान।

0: वो हमेशा बोलते हैं क्योंकि ये कैंपेन है,
1: कैंपेन
0: निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, चार पी, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। वो चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी
1: जी,
2: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी,
2: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सालों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
0: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टेब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो ही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है। तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है, ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगेगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़ा। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा। खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा, इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड किया जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए। स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है, बोलते हैं ना। ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गाँव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिये मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
0: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर हमारा दफ्तर हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। इंटेंसिटी, इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस, दीज आर द थ्री आईज विच द इंडियन कंटेंजेंट नीड्स एट द एशियन गेम्स, एंड दे हैव बीन डिस्प्लेइंग दीज एट्रीब्यूट्स विद देयर ट्रेमेंडस परफॉर्मेंसेस। हेलो एंड वेलकम टू द एशियन गेम्स आईची नगोया 2026 रिपोर्ट ऑन आकाशवाणी। माय नेम इज अभिनव पुंछी एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू ऑल द एक्शन फ्रॉम द एशियन गेम्स टुडे, एंड हियर आर द हेडलाइंस। इट वाज अनदर एक्साइटिंग डे एज आवर नेशन वन 5 मेडल्स। मीराबाई चानू स्टारिंग विद द सिल्वर, एंडिंग हर एशियाड मेडल ड्राउट, व्हाइल 4 ब्रॉन्जेस केम फ्रॉम जयमीना इन सॉफ्ट टेनिस, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team.
6: There was disappointment though, as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Ishat silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams, while the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
7: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सोंग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेट लिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
6: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
8: Roshabina Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
6: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jemina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Mina's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
9: बिल्कुल भरोसा था और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
6: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज, वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ मिक्स्ड डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट।
10: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीमी स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और माहेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किया और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की

0: 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Namneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in the hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
0: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमोव खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Huan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manush Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wang Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिनराज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गई।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम।

0: पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
0: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं, यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
2: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा।
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे। साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड।
2: India's men's kayak 4-500-meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oynam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempadale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: the Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
0: फुर्ती संतुलन और किक के खेल सेपेक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा। फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया। इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं।
1: Well, you've heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
0: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया।
1: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Beena Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be in action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's 4 finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals. All gold medal events. Our shooting team will be hoping to put the women's contingent 10 meter air pistol disappointment behind them. The men, can they do the need for tomorrow in their individual and team competition? As well as skeet mixed team competition is also happening and hopefully they get us a medal. We also have athletics action where Asha Lango and Niharika Vashisht are in the women's triple jump final and Seema is in action in the women's 10,000 meters. And finally, the Indian contingent is also in action in the kayak where there are a lot of gold medals at stake. Also in artistic gymnastics, Pranati Nayak is in action in the women's world final. And not only this, but the Indian men's team is in action in Kabaddi. The Indian men's team has a blockbuster hockey match against South Korea. We have our boxers also in action. So it's going to be an action-packed day at the Asian Games. So make sure you stay tuned for all the updates coming to you every hour on the hour from 9:30 a.m. on Akashwani. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bhadwaj and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping for another great day for the Indian contingent at the Asian Games.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर इस समय रात्रि के ठीक 10:20 हुए हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

घाट्स पर इस समय रात्रि के ठीक 10:20 हुए हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।